ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن

आते हैं, यानी हमारे हां से हुक्म होकर, बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाइ 0301 91 896

0: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
1: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
7: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: हंदर ते फिज़ाई हमला सुद समावारे में पाकी वजीर तारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो। 23 सितंबर ते अफ़गानिस्तान सरज़मीन तां ड्रोन हमलनि जी कोशिश थी हुई। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन किराए तबाह कया हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे मुंह तोड़ जवाब ॾींदे अफ़गानिस्तान में 10 हंधनि ते फिज़ाई हमला कया। अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन हमले जी कोशिश मुकमल तौर नाकाम बणाई वई आहे।

0: the nuclear weapon is in Israel, but the inspectors in Iran. Israel kills, but Iran is subject to sanctions. This is a true tragedy, which would make anyone hearing it laugh at best. They kill, we are sanctioned, we are punished. Those who are ill, innocent people, Iran.
1: अमेरिका ऐं इसराइल आलमी कानून जी भञकड़ी कंदे ॾींहुं राति ईरान ते हमला कया। तालीमी इदारनि, अस्पतालनि ऐं घरनि खे निशानो बणाए औरतुनि ऐं ॿारनि खे शहीद कयो। हमलनि ऐं शहरनि जी शहादत बावजूद कंहिं बि सूरत में ज़ुल्म अॻियां कंध न झुकाईंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान जो गरियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली इजलास में ख़िताब। ईरानी सदर ख़िताब कंदे शुरू करण खां अॻु शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई ऐं स्कूल जे शहीद ॿारनि जूं तस्वीरूं ॾेखारियूं। मसूद पज़ीशान चयो त ट्रंप असांखे दहशतगर्द करार ॾिनो, असां त पाण दहशतगर्दी जो निशानो बणिया आहियूं। असां दहशतगर्द न पर जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रहिया आहियूं। सुप्रीम लीडर खे बिना कंहिं जवाब जे शहीद कयो वियो। वाज़े कयो त हथियार न ठाहिया वेंदा पर को फ़ाइदो न थियो। ईरान खे एटम बम न पर एटमी तवानाई जी ज़रूरत आहे। एटमी हथियार त इसराइल वटि आहिनि, पोइ पाबंदियूं ईरान मथां छो? पंहिंजे वतन जे दिफ़ा लाइ कंहिंजी इजाज़त जी ज़रूरत नाहे। ईरानी सदर जे ख़िताब दौरान अमेरिकी नुमाइंदे वॉकआउट करे वियो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां शाम जे सदर अहमद ऐं IMF जे MD जूं UN जनरल असेंबली इजलास दौरान साइड लाइन मुलाक़ातूं। ॿिन तरफ़नि लाॻापनि इलाक़ाई मामलनि मुआशी सूरतयाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई। वज़ीर आज़म जो शाम सां पाकिस्तान जे तारीख़ी लाॻापन, क़ौमी इस्तेहकाम, यकजहती, अमुन ऐं मुआशी बहालीअ लाइ नए ख़्वाहिशनि जो इज़हार। शाम जो ख़ुदमुख़्तियारी इताद, इलाक़ाई सालमियत ऐं सियासी आज़ादीअ लाइ पाकिस्तान जी हिमायत जी ख़ातिरी। वज़ीर आज़म ऑफिस ॿाहिरां जारी कयल पधराई में ॼाणायो वियो आहे त वज़ीर आज़म लॻातार तआवुन करण ते MDIMF जो शुक्रिया अदा कयो। ऐं कप्टाणी भरिसां ट्रालर ऐं कार में टकर लॻण सबबि पीउ पुट फोत। अलीआबाद स्टाप वटि हादसे जे नतीजे में कार में सवार गुलाम हैदर मंगसी ऐं मुनवर मंगसी फोत थी विया। लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारस न वारे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में BEd 1.5 साल ऐं BEd 2.5 साल जूं दाख़िलाऊं शुरू थी वियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ BEd डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिसमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310 0501 09 0300 315 09।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमार्ट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स और

0: ऐं अदी अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो।

0: एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान पंहिंजी दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो. 23 सेप्टेम्बर ते अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन्स हमलनि जी कोशिश थी हुई. पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन्स तबाह कया हुआ. पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे मुंह टोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधनि ते निशानो बणायो. हमलो बणायल हंधनि में ड्रोन जा ज़खीरो कयल था ऐं लार्चेस खे तबाह कयो वियो. लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं. इस्लामाबाद में कंटेनर्स रस्ते सां बंदि आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि. वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूदु आहिनि, पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं. इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चे सां मुलाक़ात. ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं थियूं. परॾेही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास इराक़चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे. ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सिफ़ारतकारीअ ते ज़ोर भरियो. जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी 27 सेप्टेम्बर ते एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो. सनान कुरैशी चयो आहे त सिंध जी वहादत ख़िलाफ़ थींदड़ ॻाल्हियुनि खे रद्द कयूं था. सिंधु जे किनारनि ते गॾु थी एहतजाज कयो वेंदो. करोड़े सिंधी समुंड, दरिया, ज़मीनूं, ॿेला, जबल बचाइण लाइ रोडनि ते निकरंदा.

0: ऐं गुप्चाणी भरिसां ट्रॉलर ऐं कार में टकर लॻण सबबि पीउ पुटु फोत अलियाबाद स्टाप वटि हादसे जे नतीजे में कार सवार ग़ुलाम हैदर मंगसी ऐं मुनवर मंगसी फोत थिया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे, त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस, गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
5: असली चीजान चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोर जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोर सेहतमंद। जी जान चारो मसालो,
6: जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
7: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
7: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
8: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
9: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर
10: मुबारक मतलब हर किस्म की एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
11: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
12: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
13: 03013992836।
14: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी।

0: या जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि हफ्ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: कमजोर जड़ों को नए बालों की निशोनुमा में मदद दे। बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003385569।
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम सूरज जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर, 3800335569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नाइट करे, सन डैमेज और रंगने में मददगार फेशियल, रेड साफ तरोताजगी और जवाली जिल्द, 3 स्टार। आज ही अपना रोशनी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03005।
3: अपना शहर और मेहराज जी।

पाकिस्तान जो अग्राही कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फिजाई हमला। सुल सभा वाले वफाकी वजीर रता तारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो। 23 सेप्टेम्बर ते अफगान सरजमीन तां ड्रोन्स हमलनि जी कोशिश थी हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन्स तबाह कया हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधनि खे निशानो बणायो। हमलो बणायल हंधनि में ड्रोन जा ज़खीरो कयल थाक ऐं लार्जिस खे तबाह कयो वियो। लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते सां पयल आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूद आहिनि पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं। इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक़्चे सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारियुनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही खाते मूजिब इसहाक़ डार ऐं अब्बास राक़्चे में मुलाक़ात गैरियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सफ़ातकारीअ ते ज़ोर भरियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी ऐं नौजवाननि जी मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख़ुरु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि। पक आहे त नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा। हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी।

0: ये लोग हैं, ये देखे ये देखे ये देखे हे भाव मानू ही ने ए दिसो हे ता दिसो था मानू ही ने मथा भितू टपी आया है ने हे दिसो हाने हे दिसो भाई मानू है ने मोबाइल हां ए बुटू बधी आया है ये नकाब पोश
1: आया
0: है
1: दिसो
0: ये ये को भी तरीको ना है मुझे भाई को भी तरीको ना है मोबाइल ये छाई ये सुठो ये सुठो कमा हे हे दिसो हथार हे दिसो हथार हे मानू दिसो हे राज जो चार था थे ने हे से नंदा मासूम बार है ना हे नंदो तरीको आ हे दिसो
2: सिंध में पुलिस गर्दी इंतहा ते पहुंची वही कलम धनी भी पुलिस गर्दी का बची न सकया राधन में केटीए न्यूज के रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ के घर ते रात देर सा पुलिस जी चढ़ाई चादर ए चार दीवारी जो तकदस पाए माल न्याणियों सा बदतमीजी दरवाजा भी ट्रोड़े छड़ा साफी मुजफ्फर गोरड़ के घर ते चढ़ाई खिलाफ कलम धनी जो एहतजाज पुलिस गर्दी की मजम्मत जिम्मेवार पुलिस एहलकार खिलाफ केस दाखिल करे कार्रवाई करने जो मुतालबो जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी 27 सितंबर ते एहतजाज जो सद डेई छो सनान कुरैशी चयो आए त सिंध जी वहदत खिलाफ थींदड़ गालिन के रद्द कयूं था सिंधु जे किनारन ते गर्ती एहतजाज कयो वेंदो करोड़े सिंधी समुंड दरिया जमीनू बेला जबल बचाइण लाइ रोडन ते निकरंदा नौशेरो फेरोजी अदालत में अॻोणे वफ़ाक़ी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं मसरूर जतोई समेत ॿियनि जे ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी मसरूर जतोई पेश मुर्तज़ा जतोई तबियत ख़राब हुअण सबबु पेश न थियो मोरो में घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जे घर ते हमले वारे केस जी ॿुधणी थी ठठे में गुजे भरसां बनीअ में नौजवान जो वण में टंगियल लाश हथायो आहे गेनो वलिद सोमजी जो लाश इस्पताल मुंतकिल गुपचाणी भरसां ट्रॉलर ऐं कार में टकर लॻण सबबु पीउ पुट फोत अलियाबाद स्टाप वटि हादसे जे नतीजे में कार सवार गुलाम हैदर मंगसी ऐं मुनवर मंगसी फोत थिया ऐं चीन जे सूबे हेंगज़ो में पार्किंग प्लाज़ा खे बाहि लॻी वई हज़ारे गाॾियूं सड़ी रखी वयूं सड़ियल गाॾियुनि में अक्सरियत इलेक्ट्रॉनिक गाॾियुनि जी शामिल आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजंदा पहिरियों कदम वधायो।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109-0300-310-5109।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी

0: रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थियन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601100।
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 03013992836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान तकरार खत्म कराने लाइ पुरउमीद खिते में अमुन जे क़याम वारी कोशिशूं जारी रखण जे अज़म जो वरजाओ न्यूयॉर्क में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जो समूरो ध्यान ईरान अमेरिका जंग जे ख़ात्मे ते आहे पाकिस्तान जो अमेरिका ईरान छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सालसे वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि दोस्त मुल्क बि कोशिशुनि में सहकारी आहिनि उमीद नाहे छॾी समूरो ध्यानु तकरार जे ख़ात्मे ते आहे शर्त पूरा थियण ताईं न आब न हरमुज़ खुलंदो न ई ॻाल्हियूं थींदियूं ईरान जो वाज़े ऐलान ईरानी अमलदार मूजिबि आब न हरमुज़ खोलण वारो मामिलो जंग जे ख़ात्मे अमेरिकी फ़ौजी दबाउ में घटिताई सां ॻंढियल आहे जेसिताईं ईरानी शर्त तस्लीम न कया वेंदा तेसिताईं आब न हरमुज़ न खुलंदो ईरान एटमी हथियारनि तां हथ खणे त अमेरिका तेहरान सां जंग ख़तम करे सघे थो अमेरिकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका लाइ वॾो मसलो एटमी हथियारनि वारो आहे ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजण घुर्जनि इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रंप बि तेहरान सां मुआहिदो करे सघे थो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक़्चे सां मुलाक़ात ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशुनि ते ॻाल्हियूं परडे॒ही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास राक़्चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे ॿिन्ही अॻवाणनि अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारतकारीअ ते ज़ोर भरियो लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते सां पयल आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूद आहिनि पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं शहबाज शरीफ़ चयो त बासलाहित नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख़ुरु आहे नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि पक आहे त नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी

0: देखें ये देखें। ये
1: देखे
0: भाव मानू है ने ए दिसो ए ता दिसो था मानू है ने मथा भितू टपी आया है ने ए दिसो हाँ ए दिसो हाँ ही मानू है ने ए बुटू बधी आया है ये नकाब पोश
2: आया ने दिसो
0: ये रियो को भी तरीको ना है मुझे भाई को भी तरीको ना है इयो छाई इयो सुठो कमा हे हे दिसो हथा हे दिसो हथा हे मानू दिसो हे राज चार था थे ने हे से नंदा मासूम बार है ने हे नंदो तरीको आ हे दिसो।

0: सिंध में पुलिस गर्दी इंतहा ते पहुची वही। कलमदनी भी पुलिस गर्दी का बची न सकिया। अमुन अमान बाबत खबरू आवाम ताई पहुंचाण भी डोह बणजी वयो। रादड़ में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ के घर से रात देर से पुलिस के दाड़ेलन जिया चढ़ाई। बिना वर्दी अहलकारन पारा चादर ए चार दीवारी जो तकदस पाए माल न्याणियों से बदतमीजी। दरवाजा भी ट्रोड़े छड़िया। साफ ही मुजफ्फर गोरड़ के घर से चढ़ाई खिलाफ कलमदन जो एहतजाज। जिम्मेवार पुलिस अहलकारन खिलाफ केस दाखिल करे कार्रवाई करने जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94
4: GFM 88 सिंध की आवाज।
5: सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कसीदा था कि आप लोगों के साथ मिलकर हमने एंजॉय किया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है जनाब। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपको कैसा रिजल्ट मिला है, और साथ ही साथ अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे बताइए जल्दी से कब कब इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक आप हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिलनी चाहिए, और आप बस जाएं अपने करीबी जनरल स्टोर से और वहां से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट नाम लेकर तलब करें। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे ये बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये तो बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो कैसे आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, सवाल बताते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं आप हमारे प्रोग्राम में शामिल किस तरह से होंगे। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताइए वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर उसे पूरा साल इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, गरीबी की इंतहा हो गई आप मुझे बताए कि वो क्या है जो साल में एक बार हम खरीदते हैं लेकिन उसे पूरा साल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ हाँ जी, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, तो मुझे बताएं ये क्या हो सकता है। और साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। जैसे आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। पोस्ट को शेयर किया करें लाजमी और लाइक किया करें ताकि भाई हमारी पोस्ट जो है ना बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग जान सके कि मार्केट में उनके लिए भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं भाई, ये सबके लिए है। जितना भी माण्हू असांखे ॿुधनि था, जिते जिते मुझे आवाज़ वञे थो, हर हिकु माण्हू जे लाइ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूदु आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उनमें अव्हांखे मिली थी जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश। ही ॿ प्रोडक्ट मार्केट में इन आहिनि, अगरि तव्हां परचेज़ करण चाहियो था त बिल्कुल तव्हां परचेज़ करे सघो था। ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि ऐं हर हिकु माण्हू इनखे लॻाए सघे थो, यानी कि अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, तव्हां ख़वातीन आहियो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सघे थो। यस जनाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती में जरा इजाफा लाने वाले हैं। और जी यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों के फीडबैक से ही क्या कह रहे हैं। यहाँ पर अलाडिना भाई हमें कश्मीर से सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, अलाडिना भाई आपको वेलकम कहते हैं। फरवा हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, तमाम की आयो, तमाम जी तबियत हानि की है, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अब्दुल जी कैसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं अब्दुल जी कैसर। और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, इन मौला इस्लाम मदद, आप हमें मटियारी से सुन रहे हैं, वेलकम हो गया आपका। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गोठ दातो भट्टी मटियारी खान निजामदीन भट्टी कादरी तव्हां जो मोहब्बत ऐं भा तव्हां खे बि चवंदा भली करे आया। और कहते सभिनी फ़क़ीरन आशिकन परवानन दस्तगीरन मुरीदन खे हज़र सैदना गोसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी यारी शरीफ़ मुबारक हुजे। ओके, अच्छा फरवा गुल कहती हैं, आप ही अर्ज़ किया है, एक शख्स मैंने देखा है आईने में, खफा दुनिया से है और बात मुझसे भी नहीं करता, राजी करें बाबा, इस इंसान को राजी करें। और कहती हैं आज गाने की फरमाइश मां ॾिसां थी, गाना हलाइण जी कोशिश कंदा सी। और निज़ाम भट्टी भाई तव्हांजो मोहबतो आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो पिया। और हमारे साथ हैं जी ज़ीशान, ज़ीशान रेडियो नेटवर्क ऑफिशियल से हमारे साथ कहते हैं लाड़काने खां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधां पियो, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान भाउ, तव्हांजो मोहबतो आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे हर जॻह ते मिली रही आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो ई कमाल आहे बाबा, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे थी ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे चेहरे खे चमकाए थी। चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठी सघे थो। और जी आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो क्या है जो हम एक मर्तबा खरीदते हैं लेकिन उसको पूरा साल ही हमें यूज करना पड़ जाता है। और वसीम अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं अरे लाड़काना तो में रहन था मुंजा अबाना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना इस्लाम मदद कहते अदा कीड़ा हाल आयन खुश आयो सफा चाको सलेट कलम गाड़ी मस्जिद अची वयासीं, प्रोग्राम त लाजवाब आई हमेशा जी हां, तमाम आगे कल अदा शाम वारे प्रोग्राम में मुख्य कम हुयो उन करे अध प्रोग्राम में हलियो वयो होयस का गाल कोने का गाल कोने जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ हैं गोठ करम खान नजामानी नवाब शाह से सही जी जाकिर हुसैन कोरी मंजूर अली कोरी मुश्ताक अहमद नजामानी उस्ताद मौला बख्श लाखो उस्ताद शफी मोहम्मद रेडियो मिस्त्री और वालेकुम अस्सलाम जी मौला अलैहिस्सलाम अदद कहते हैं आप भाइयों को सबको वेलकम कहा जाता है हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में और खूबसूरती की दुनिया में आप भी जनाब कदम रख सकते हैं और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी ये अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा क्या हाल है आपके आपका शो जबरदस्ती आज स्कूल नहीं गई तो सुन रही हूँ आपको और ओएसटी सुनाइएगा डेडिकेट आपको और मेरी फैमिली को मीरपुर खास से रुखसार मरी हमें सुन रही हैं बहुत शुक्रिया प्यारी आपको वेलकम कहते हैं चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो की आई हो खुश आयो अम हाँ विथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड आ सफा मजे में आया तुम पांजा हाल बुधायो और वसीम अली कहते हैं कि सिस्टर सॉन्ग जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से कोशिश कयां थी तव्हांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं और रुखसार मरी कहती है कि आपको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे आमीन बहुत शुक्रिया मेरी जान अबू हनीफ अलबलोची हमारे साथ है कहते हैं कि तुझे कैसे बताऊं मैं तो कितना याद आता है मैं जितनी सांस लेता हूं तो उतना याद आता है सिंधी सॉन्ग सुनाओ जंहिंमें तू न हुजे अहिड़ी दिल काड़े कंदासीं इहा बि ॻाल्हि आहे हाज़िर ॿुधायूं था पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ठीक है और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी करीबी जनरल स्टोर से मिल रही है नहीं ये मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक मालूमात नहीं ली तो आज ही आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से जरा मालूमात लीजिए और मुझे पता करके बताइए कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो अवेलेबल कराने की नीड है और आप चाहते हैं कि भाई फलां जगह पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए और डी स्किन का फेस वॉश भी मिलना चाहिए ताकि हम इस्तेमाल करें और हम भी खूबसूरत हो जाए अच्छा अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ मौजूद है अख्तियार भाई विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर जी हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है मोहम्मद जमान भाई हमें सुन रहे हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी ऑसम शो कोयल आरजे की तरह सो बिग वेलकम दिल से आपको भी बिग वेलकम दिल से दर्द दिल हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है आप बताएं स्वीटी कैसी हैं और दिया हमारे साथ हैं दिया परी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान कैसी हैं आप उम्मीद के अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी मैं तो कब से थी रेडी तैयार पटाले डियर सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से जी जी आपको ऐसा पटा लेंगे कि आप कहेंगे आए हाय ये तो सिद्रा ने हिप्नोटाइज कर लिया और कहती है सॉन्ग प्ले करें बिल्कुल तांजला दिया गानो हलाएं था डेडिकेट मुखे एंड डेविल के कयो आए वैसे डेविल काथे गुम थी वयो आए हलो वयो जा डेविल्स की दुनिया में अली रजा लगारिया में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अली रजा भाई आपको वेलकम कहते हैं इतना लंबा चौड़ा आपने कमेंट कर दिया है और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपकी पसंद का गाना जरूर लगाएंगे डेडिकेशन आपकी जा रही है जी अजहर लगारी आकिब लगारी आरजी गुलाम मुस्तफा टालपुर इमाम बख्श खोखर खालिक लाशारी सिस्टर सिद्रा हमसे लोग पूछते हैं आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है मैंने बोला डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है सिस्टर थैंक्स वाह वाह वाह वाह वाह वाह एड़ा एड़ा कॉमेंट कंदा ये तो मैंने रैंडमली पढ़ लिया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया अली रजा ऐसे ही आप बताया करें लोगों को भी ये डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है कि आप इतना ग्लो कैसे करने लग गए हैं वो भी सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से मतलब ॿुधो तव्हां कॾहिं त तव्हांखे एतिरो जल्दी कोई प्रोडक्ट रिज़ल्ट ॾे ऐं उहो प्रोडक्ट वरी मेडिकेटेड फार्मूलो हुजे समझो था सो जनाब ये कमाल हो जाएगा जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और जरा खूबसूरती में इजाफा लाते जाइए और यहाँ पे टाइम हुआ है जनाब लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: It's 1:30 p.m. This time check if
2: खुश खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: 2196-851।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
2: नूरे जा पीउ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
6: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-33-85569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातिली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ही बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा आपको रिजल्ट कैसे मिले। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करने के बाद किस तरह के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई जरा कान खोल के सुन लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है जैसे कोई नाइट क्रीम होती है रेगुलर आप इस्तेमाल करे होते हैं। भाई जान, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, एक अड़ो प्रोडक्ट मार्केट में एंड थी वया जिन जो तमाम सदिन का इंतजार कयो पया। ऐं सदिन का अगर तमाम इंतजार कयो पया तो तमाम जिला कोई भी अड़ो प्रोडक्ट तमाम के मार्केट में बिल्कुल भी नजर नहीं दो। जदी तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसना छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर ओए सब चीजों एड थियल आइन जेके तमाम जी स्किन के सफा सोनो, सफा प्यारो ऐं सफा गोरो गोरो बनाए छडींदी। और जी सबसे बेहतरीन बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि भाई वाकई आप कुछ तो अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो हटके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसको इस तरह से ऐड किया गया है कि बाजार तो ये एक नाइट क्रीम लगती है लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून्स वगैरह में अपना पैसा जो है वो वेस्ट करें या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून्स में अपना टाइम वेस्ट करें, तो उस सूरत हाल को देखते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि आप लोगों का पैसा भी बचाता है, आप लोगों का टाइम भी बचाता है। वो कैसे? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये जना महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए तो भाई ये सोचकर इस्तेमाल कीजिए कि भाई हम जो है ना ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका यूज करने के बाद हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि भाई हमें आज तक कभी पहले नहीं मिले हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो भाई आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो जल्दी से कीजिए और ये बात आप लोगों को बता दी चलो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने सारे प्रोडक्ट है हमारे पूरे पाकिस्तान में, उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं प्रोडक्ट में है जनाब। तो इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इतना कमाल का प्रोडक्ट है, इतना शानदार प्रोडक्ट है, तो इससे मुझे तो ये चाहिए भाई आप लोगों को बता दूं कि आप जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और अप्लाई करके मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। बाकी तो आप देख ही रही हैं जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उनका कितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता जा रहा है। तो आप भी लगाइए और अपने चेहरे को चमकाइए क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में शामिल करें जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी जिल्द की जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आपकी जल्द लोग देखकर कहेंगे कि भाई क्या हो गया, कौन सा जादू कर रहे हैं, इतना फास्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है। और जनाब आपके चेहरे पर जो ये ताजगी होगी, ये एतमाद होगा, वो आप देखकर खुद ही कहेंगे भाई सदरा तसाई पे चवे पर असाई हो या से जो इस्तेमाल न पाया कयो बाबा तमा इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई माजी खूबसूरती में मॉइस्चराइज जेको ना मॉइस्चराइज भी थी वेंदी तमा जी स्किन आई तमा जी खूबसूरती में चार छंट लगी वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड तांके डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहयो आहे। अगर कुछ मानू फर्ज कयो क्रीमू न लगाए सकंदा आहिन, यानी कि तव्हां खे थोरो स्किन सां रिलेटेड को मसलो आहे, को प्रॉब्लम आहे ऐं तव्हां क्रीम नथा लॻाए सघो त तव्हां जे लाइ डी स्किन जो फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल आहे। ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न इहो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा
तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वाकई का शइ इस्तेमालु करे रहिया आहियो, छो त मार्केट में तव्हां वेंदा आहियो त खोड़ सारा प्रोडक्ट तव्हां ॾिसी करे असांखे अखियुनि खे मतिलबु ई महसूसु थींदो आहे त बाबा हीउ बि वठणु घुरिजे, हीउ बि वठणु घुरिजे, ऐं हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो, हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो। पर उहे जेके सभु प्रोडक्ट हूंदा न उन्हनि खां हटके आहे डी स्किन फेस वॉश, जेको तव्हांजे लाइ एतिरो प्रीमियम तरीक़े सां तयारु कयो आहे, जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त तव्हांजी हिकु अखि जेको भाए वेंदी त वाकई बाबा हीअ शइ ॾाढी भली आहे, असांखे वठणु घुरिजे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेके प्रॉपर्टीज़ शामिलु आहिनि डी स्किन जो फेस वॉश अगरि ॾिठो वञे त उन में तव्हांजे लाइ एक्स्ट्रा हिकिड़ी चीज़ एड कई वई आहे, जंहिंजो नालो आहे हाइलोरोनिक एसिड सीरम। ऐं हाइलोरोनिक एसिड सीरम जेको आहे न, इहो तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, ऐं हीउ हर स्किन जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे, यानी कि तव्हां अगरि नंढा आहियो, तव्हां जवान आहियो, तव्हां कुराड़ा आहियो, हर स्किन जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। उन सां फ़ाइदो इहो पहुचंदो आहे तव्हांजे चहिरे खे त तव्हांजी स्किन जेका आहे उहा डीपली क्लीन रहंदी आहे, तव्हांजी स्किन खे डीपली क्लीन कंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन हाइड्रेट रहंदी आहे, ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे मॉइस्चराइज़ बि रहंदी आहे। यानी कि कुझु माण्हुनि जी स्किन तव्हां ॾिठी हूंदी भई ईअं रुखी सुखी महसूसु थींदी आहे, ईअं लॻंदो आहे बाबा ॼण निंड पूरी नथी अथसि, ॼण बीमार आहे, तबियत ख़राबु अथसि। ऐं कुझु माण्हुनि खां वरी पुछबो बाबा छा थियो आहे, तबियत सही न आहे छा, तव्हांजो मुंहुं ॿुधायो थो, त हू चवंदा न मां ठीकु आहियां, बसि मुंहिंजी स्किन खे अलाए छा थी वियो आहे, स्किन एॾी बेजान ऐं बेरोनक लॻे थी। त उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधायो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो, डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिसो, ऐं तव्हांजी स्किन ते निखार अची वेंदो, ग्लो अची वेंदो, हिकु अलॻि ई ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वेंदी, ऐं तव्हां पाण ई चवंदा बाबा वाह वाह हीउ त कमाल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था त पोइ तव्हांखे नंबर्स ते राबितो करिणो पवंदो, जेके नंबर तव्हांखे ॿुधायो उन्हनि खे ज़रा नोट करे वठिजो। ओके जनाब, सो नंबर्स आहिनि 0332738439, 3232 84 309, 3 3 2 7 3 8 4 3 0 9। ठीकु आहे, इहो टिनी तरीक़नि सां तव्हांखे नंबर ॿुधायो, अगरि इहो नंबर अगरि बंदि हुजे या फिर अटेंड न थिए न थी कॉल त तव्हां ॿिए नंबर ते ट्राए करे सघो था। ॿियो नंबर आहे 03 12 50 25 907, 3 12 50 25 907, 3 1 2 5 5 9 7। चले ये नंबर्स आप डायल कर लीजिएगा जो कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराने में जरा हेल्प करेंगे। आप उनकी हेल्प कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन, जो कि भाई नाम ही काफी है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा बातें मजीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों में ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों के फीडबैक सामने प्रोग्राम रखूंगी, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि मुझे बताइए कि वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, ये मतलब सवाल पूछकर मेरे को वो वाली मीम याद आ गई कि हमने गरीबी देखी हमने गरीबी देखी है। हाँ जी, आप बताएं।

ओके जी, वशमल एक गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप कहां से मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. अच्छा, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुस्कान? ये मंजूर शकरानी का सॉन्ग, हां जी, लगाते हैं आपके लिए ये वाला गाना. आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा. और अख्तियार अली भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम वेलकम. अबू हनीफ अलबलोची, आपने टॉपिक का जवाब दिया है.

शुक्रिया। ओके जी, अबू हनीफ अलबलोची, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बढ़िया हो गया जी ये तो। जैन अली हमें सुन रहे, कहते हैं कि वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। कहते कि तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह वाह, वेलकम। ओके जी, अहमद अली समेजू हमारे साथ मौजूद है, समूरी संगत के सलाम, वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाई। निदड़ी हमारे साथ प्रोग्राम में है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, वेलकम टू शो। तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं गुम हो जाती हूँ, टॉपिक वो है अलाइचा। सही है, तबीयत का ख्याल रखो बाबा। और किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं, सलाम अदा, असां भी मर्द हजरात आयूं, बिल्कुल जी को शक न आए, तुम असां सोना भाई आयो, आई तुम्हारे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना है। उनके अलावा शमन अली हमारे साथ कहते कि ये लहजे फकत रसीले हैं, ये लोग बड़े जहरीले हैं, तुम सफा सही फरमायो है, डाडो भलो। एसन अरबानी वालेकुम अस्सलाम कहते, मौला सलाम अदा, ओ माय फेवरेट आरसी मैडम मुस्कान जी, कैसी आप, वेलकम कहते हैं दिल से, आपको भी वेलकम कहते हैं। आगे नहीं बोलूंगी। बिल्कुल जनाब, वशमले तो ठीक है, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे ये जरूर बताया करें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने कहाँ से परचेज करी ये भी बताइए। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए हमने जो है ना वो हर जगह अवेलेबल करा दी है, लेकिन ये बात भी जरा आ जाती है बीच में कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। तो आपको जो नंबर बताया जाता है प्रोग्राम में उसके ऊपर बस रब्ता कर लिया करें, रब्ता करने के फौरन बाद ही आके करीबी जनरल स्टोर्स पर तारिक भाई जो है वो अवेलेबल करा देंगे, है ना तारिक भाई, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास में भी अवेलेबल है। बिल्कुल जी, तारिक भाई मीरपुर खास आज विजिट कर रहे हैं और मीरपुर खास में जितने भी जनरल स्टोर है वहाँ पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी, तो आप भी जाइएगा और परचेज कीजिएगा। बाकी तो आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने बाकी है, ताकि हम तारिक भाई को बता के वहाँ पर भी अवेलेबल

0: आप ही भाई डेज स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के खूबसूरत हो गए और दादा लगे थे वाह शिम्पी क्या गाना लगाया है, अच्छा है ना?
1: बिल्कुल जी।
0: और यहाँ पर तारिक खान हमारे साथ है और तारिक भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और साजिद हुसैन सुमरो भाई सलाम सिदरा वाह जी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ना बाबा। और फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, शमन का गाना बिल्कुल आपको सुनाया जाएगा। ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी छा जाइए। अच्छा वसीम अली हमें सुन रहे हैं, आपने टॉपिक का जवाब दिया है ओके। और फहीम भाई कहते सांझर वारा कॉमेंट तमा रीड कया हुआ, बिल्कुल कया हुआ सभी रीड करना है। और इकबाल आशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी। अली रज़ा लगारी आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया है।
2: आँखों में मेरी खाब है तेरे।
0: अच्छा दिया कहती है कि डेविल की कमी मैं पूरी करने में आ जाती हूँ ना, डेविल बहुत बिजी है, आपका शो की टाइमिंग ही ऐसी है ना कि बेचारा काबू में है वैसे हमारे काबू से बाहर है लेकिन किसी के तो काबू में है। हाँ भाई बड़ी से बड़ी चीज किसी ना किसी के काबू में जरूर होती है, ये चीज याद रखा कर।

हाँ जी, क्या बात है। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सितराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ को मुझे बताइए जनाब, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं ये भी बताइएगा। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं जनाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। मोहम्मद समान कहते हैं कि अगर मेरा टॉपिक पर आंसर करेक्ट है तो मुझे अपनी आवाज में 5 मरतबा स्वीट बिग कह के सुनाए, और वो है महकी। अब तो ये सबको पता चल जाएगा ना कि आपने ये जवाब सही दिया या गलत दिया है, तो फिलहाल अभी को रहने देते हैं। और चाचा खाले तो आपने लिंक शेयर कर दी है, ओके हो गया जी। और कहते हैं कि अम्मा जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे शो में आसानी लाए गाने जी लिंक शेयर किया। हाँ चाचा मेहरबानी हुई तवाजू, बस हाँ तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी इस्तेमाल करे बैठो। मलिक नजर हुसैन हमारे साथ ही भाई, आपको भी वेलकम हो गया। बहावलपुर से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या बात है।

0: बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ मुझे बताइए आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा किशोर भाई कहते ये दिया भी जिया जी वाइफ डे भी सच्ची बताए तो मुख्य भी क्यों हमारा दिमाग जो है वो एक जैसा काम कर रहा होता है, ऐसा क्यों बताएं मुझे। फहीम भाई कहते हैं कि दादा टॉपिक का जवाब है आपको मिल गया है और मैं जवाब नहीं दूंगा, कॉपी हो जाएगा। और अगर चलें ठीक है ओके ओके, आज वैसे आपने सबसे पहले जवाब क्यों नहीं दिया। अच्छा चाचा लिखते हैं कि अगर आप किसी ऐसी चीज का बोझ उठा रहे हैं जो एक बार खरीदने के बाद पूरा साल चलती रहे तो जरा बताएं कि किस चीज के बारे में, मिसलन घर, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, सोलर या कोई और चीज, आप थोड़ा सा इशारा दे दे, मैं फौरन बता दूंगा।
1: बार बार मेरे दिल के तार के तुझ पे है।
0: ये तमाम चीजें तो नहीं है और ही कुछ ये हिंट काफी आपके लिए। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से, आपको भी वेलकम है सर। जेकब आबाद में भी आपके लिए टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा अर्ज मोहम्मद गोला भाई। अच्छा अनवर भाई हमारे साथ कहते हैं कि हवा में रक्स सा है, दिल की धड़कनों में है नूर, गमों के बादल नाखवास्ता हुए हैं, दूर दूर चमक रहा है मुकद्दर का हर सितारा, आज खुशी से झूम रहा है ये आलमे पुर नूर, जो तलखियां थी कभी वो गुलाब हो गई, अब हमें मिला है जो चेहरा वो महताब हो गया, हंसी की धूप में महकता है कायनात का दिल, ये लम्हा ठहर जाए काश हो ये वक्त जरूर, हर एक समत से बिखरा हुआ सुकून का रंग, मिल गई है मोहब्बत की मंजिल मकसूद। कहते हैं अदी सदरा मतलब पता नहीं क्या है वशमल, वो मेरे को भी नहीं पता ये पता नहीं क्या है वशमल मेरे को तो मार्शमेलो लगता है बाकी आप अपना बताइए और साथ साथ जिस कंप्यूटर क्रीम लगा दे नहीं वो भी बताइए। और टाइम वाइज जनाब यहाँ पर न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक, यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाएगी।

0: It's 2 p.m. This project is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asi Glow. It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: दहशतगर्दन के कामयाबे सां निशानो बणाए जहनम भेड़ो कयो मारजी वियल दहशतगर्दन वटां हथियार बि हथ कया विया आहिनि। पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधनि ते फिज़ाई हमला सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो। 23 सेप्टेम्बर ते अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन्स हमलनि जी कोशिश थी हुई। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन्स तबाह कया हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे मुंह तोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधनि खे निशानो बणायो। हमलो बणायल हंधनि में ड्रोन जा ज़खीरो कयल थाक तबाह कया विया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

ओके जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सक्रेन मोरो मीरपुर खास मटियारी सक्रेन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और क्यों ना की जाए जनाब, क्योंकि इतना शानदार इतना कमाल का प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो हम क्यों ना बताएं उसके बारे में आप लोगों को, ताकि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना सारा फायदा आपको मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने वाले लोगों से पूछिए उनको कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करके देखी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो लाजमी ट्राई करके देखिए और इसी के साथ साथ हमें जरूर बताइएगा कि आपको भी रिजल्ट्स कैसे मिले। ओके जी, सबसे मजे की और बेहतरीन बात ये है ना कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किए गए हैं, यानी कि इन्हें डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो ये जो हमारे जहन में चीज होती है ना कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हमारे चेहरे पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो अगर ये चीजें आप सोच रहे हैं या फिर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आप लोग इस चीज से जरा जो है ना वो फ्री हो जाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन से रिलेटेड ही तैयार की गई है। हर स्किन से रिलेटेड है जनाब, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के हिसाब से जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त फार्मूला बनके तैयार हुआ है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बहुत शानदार वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये 2-in-1 फार्मूला है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप भी कोई महंगा सा फेशियल अफोर्ड नहीं करते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और आपको मिल जाएगा जनाब ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार कि आप बस ख्वाबों में ही सोचते थे कभी, लेकिन अब वो ख्वाब सच हो सकते हैं। और हाँ, ये बात भी आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप ये सोच रहे ना कि भाई हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हमें खूबसूरती मिल जाएगी, ये चीज तो तय है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो बाद में क्या वो खूबसूरती वापस आपसे छिन जाएगी या फिर आप वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपकी पहले से स्किन थी, बेजान रुखी सूखी सी डल स्किन? तो ये तमाम चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको जो रिजल्ट्स मिल चुके हैं, आपको जो निखार मिल चुका है, जो खूबसूरती आपको मिल चुकी है, वो बस आप ही की है। एंजॉय कीजिए अपनी खूबसूरती को और हमेशा इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। ब्रेक लेना जरूरी होता है तो अच्छी बात है जी, और ये भी बात है कि आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े कमाल का प्रोडक्ट है। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर जो होता है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये क्रीम आपके रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है और आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी जो स्किन है ना उसके ऊपर ख्याल अगर आप बहुत ज्यादा नहीं रख पाते हैं तो बस आप सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें और साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तब तो भाई क्या ही बात है। ये दोनों चीजें जो ना बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लगाते हैं ना तब तो भाई वाह वाह हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिल चुके होंगे। क्योंकि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ एक मेकअप काफी नहीं होता बल्कि आपके दिन भर का जो ख्याल होता है, केयर होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप कोई अच्छा सा फेस वॉश ट्राई कर रहे होते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे ये कमाल होगा कि भाई आपकी जो स्किन है ना वो दिन भर जो है वो तरोताजा रहती है, शादाब रहती है और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा सा फेस वॉश आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया और जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना ये आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को जो है ना वो डीपली क्लीन करता है। आपके चेहरे पर जो ये गंदगी हो जाती है जमा या फिर डल स्किन काफी ज्यादा टाइम से ही आपकी, या फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई आपकी स्किन हमेशा जो है वो ऑयली क्यों रहती है, हमेशा आपकी स्किन जो है वो रुखी सूखी सी क्यों रहती है, तो इन तमाम चीजों का हल है जनाब डी स्किन फेस वॉश। आप इस्तेमाल करते रहिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है तो आपके चेहरे पर जो ऑयल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके चेहरे की स्किन अगर रुखी सूखी है तो वो भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। यानी कि ये हर स्किन के हिसाब से तैयार किया गया और आपकी स्किन हमेशा जो है ना वो हाइड्रेट भी रहेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी और आपकी स्किन के साथ जो है ना आप महसूस करेंगे कि भाई वाकई कमाल तो देखने को मिल रहा है। और ये
कमाल आपको तभी मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसे आप 2-3 मरतबा रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। सुबह लगाइए, दोपहर लगाइए, रात में लगाइए, और जब आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई सदरा क्यों बताती है, क्योंकि ये है इतने कमाल के प्रोडक्ट्स, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल सुना, आप ट्राई करके देखिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738430 9। बुरी ट्रेस ओ बट्री है 73-84-309। योर नंबर आहे 03-12-50-25-907। बुरी 312 50-25 907। ही नंबर सां जगह तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। अगर तहां जे करीबी जनरल स्टोर से खाली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी एंड फेस वॉश नथो मिले, तो नंबर से तुम रातो करे फेस वॉश के भी अवेलेबल कराए बैठो। मुकम्मल खूबसूरती हासिल कयो बाबा एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो एंड इस्तेमाल करना रहो एंड खूबसूरत इंदा रहो। ओके जी, इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया और सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 888-1 और फेसबुक पर, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस है वो काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें। इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन का फायदा ही ऐसा है कि आप सारे लोग इस्तेमाल करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रही है।

क्या बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रही हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराती रही है, नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा यहाँ पर पैनल पर आते हैं तो आपकी मैसेजेस हैं। ओके जी, चाचा खालिद कहते हैं हमारे साथ, बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, काफी डेज थी वया आहिन, मुझे गानो न हलायो आ, हाजिर हाजिर, अज तां जो गानो लाज़मी हलायूं था, आई ठीक आ, तवां जो गानो मुखे मिली वयो आ, तां बस थोड़ो सबर कयो। और जी गोठ मोमन तैयब थेबो का हबीबुल्ला थेबो हमारे साथ कहते तमा जो शो वेरी नाइस आहे, सलाम तमा के, वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, तमा जो मोबतुन प्रोग्राम बुधो पया। और विलेज कोट अली नवाज जलबाणी से सिराज अली जलबाणी एंड मंजूर जलबाणी वीआईपी प्रोग्राम है, ममताज मोलाई का गाना सुनाओ, ममताज मोलाई तमा बुधो हुंदो, बेशक तमा के मजो अची वयो हुंदो। और ये हमारे साथ है मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, टी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करे सिर्फ।

0: ਦੇਨੇ
1: ਸਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਜਾ ਕਸਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰੱਖ ਜਾ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣੋ।
0: वैसे आजकल के दौर में सच्ची बात है, दोस्ती रखनी भी नहीं चाहिए किसी से भी नहीं। और गाने एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ है मंजूर अली खास केली। चाचा खालिद को शादी मुबारक, झंडो मरी का हाजिर हाजिर बाबा तांजो मुबारक पहुंची हुई चाचे ताई। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां। कुर्बान खास के लिए भाई हमारे साथ माजूद भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा साइमा मीर हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सिंजी सदाबहार आरजे सदरा मुस्कान, शो दमदार आहे, मजेदार आहे, शानदार आहे, सॉन्ग सुनाओ सिंधी मेशअप हलायूं था सोनी जिला सिंधी मेशअप डेडिकेट। अच्छा तमाम टॉपिक जो जवाब भी दिनो आए, सही है सही है, सफा सही है। और साइमा मीर कहती है सलाम बीमार निदड़ी के, और कहती है गुड न्यूज है उसके लिए, फिरोज खान का नया ड्रामा आने वाला है, देखना मत भूलना और दवाई पी लो जल्दी सेहतियाब हो जाओ, सिदरो के शो की रौनक हो तुम। हाँ भाई नगाल में शक कोने को अलाए बुधे भी अथी अलाए हली वही

हाँ भाई हाँ, गाल ॿुधो टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था कोन, गाना तो ॿुधो था पर टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो बाबा। टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल का फौरन बाद ही तव्हां खे जेका खूबसूरती मिलंदी ना, माण्हू तव्हां खां वराए पुछंदा त ॿुधायो त सही आहे खूबसूरती काॾां आंदी अथव, हिन खे ॿुधाइजो बाबा त हीअ टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे। ऐं टी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा तव्हांजी हर स्किन ते सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे, यानी कि तव्हांजी स्किन कहिड़ी बि तरह जी आहे हर स्किन जे मथां तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल करे सघो था। ऐं टी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूला आहे त इहो टेंशन बि न आहे बाबा त केमिकल हूंदसि या असां लॻाए सघूं था अलाए नथा लॻाए सघूं, तव्हां हर स्किन जे मथां आराम सां लॻाए सघो था। मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, डॉक्टरनि ठाहियो आहे। ऐं टी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त हुन डबी ते बि डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, त हीअ निशानी अथव, यादि रखिजो। वठण वञो त स्कीम खां बचो ऐं टी स्किन ब्यूटी क्रीम ई वठी अचो।

अच्छा अदा चए तो असा दोस्ती रखना ना आयो पर मानो जोरी रखन त छा कयो हाने दौड़ ना है दोस्ती रखन जो बजे के पुराना फ्रेंड्स अथव ना वो काफी इन गंजन छड़े दियो बस मानन के।

चाचू चे तो झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, बिल्कुल झंडो मरी में मिले थी। यो भाव ही बुधाईना था, झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। फहीम भाई कहते हैं अदा सबसे पहले जवाब इसीलिए नहीं दिया, एक मुसीबत मेरे ऊपर खड़ी थी, उसे बात कर रहा था, कमेंट भी तैयार कर रहा था तो आपको पहले जवाब मिल गया। अच्छा सही उनका अलावा जेको आसो तालिम मरी भाई से सगड़ मौजूद है तमाम खोट सारा कॉमेंट आया भाई थैंक यू सो मच तुम सगड़ आयो आई पोस्ट के लाइक शेयर कर रहो इतने असा मनू था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मोटी जल्दी तुम्हारी चाहती तुम इतने बैठा हो काडे भी नो पान जगह न हिलजो मैं ओ ही वनी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। बिल्कुल जी वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m. This time check.
1: मेरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। हफ़्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड

0: रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-38-65453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।

ओके जी बिल्कुल, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारी फजली मौजूद है। कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो जानू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। कहती है चाय पियो, इस वक्त चाय हम शाम को पीते हैं। और कहती है शादी की बेहतरीन उम्र 70 साल है, ना ज्यादा अरसा ससुराल का, हाँ जी ससुराल का अजाब, ना लंबी अजियत, बस मुख्तसर तजुर्बा और सीधा आखिरी सफर। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही उम्र बता दी, वैसे सही है, इससे बेहतर है इंसान करे ही ना। और कहती है सुनो प्यारी, कल वैसे इंग्लिश गाने आपने अच्छे लगाए थे और सॉन्ग्स अच्छे प्ले किया करें। हाँ मां कोशिश करनी आता गाना सुठा सुठा प्ले कयो, पर माण्हुनि जी वरी फरमाइशूं बि अची वेंदियूं आहिनि त बस पोइ मिक्स गुचुण मुचुण थी वेंदो आहे कमु, सम्झो था। और मोहम्मद गोठ मोहम्मद तैयब थी हबीबुल्ला थेबो भाई, कहते चाचा खाले तो जुड़ी जुड़ी सच में शादी थी आए। अरे बाबा छो चाचे जे कड पे आयो बेचारे के घर में कटराई दो चाचा। मेरे नडी मजाक में चयो सी। और ये हमारे साथ हैं जी गोठ मोहम्मद तैयब थी हबीबुल्ला थेबो भाई, कहते हैं कि बेस्ट आरजे जी सिद्रा मुस्कान, यहां गाल सच्ची आहे न बाबा, नाए सच्ची नाए सच्ची, तमाम बस इते स्टॉप फुल स्टॉप लगायो सिन गाल के, आई तमा वन्यो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पांज लाए परचेस करिए चो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा लगाइना त पो अगर ताजी शादी नाए थेला त पो ताजी शादी कराइंदासी। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने का फौरन बाद ही तमाके जेको निखार मिले थो, जेका खूबसूरती मिले थी, आई जेका चमक तुम्हारे चेहरे ते अचे थी ना, वह सब डिसी करे तुम्हें नोटिस कंदा, आई चंदा बुधायो त सही छा पे इस्तेमाल कयो, एडा खूबसूरत थी वया हो, आई पो जाहिर सी गाला तुम्हारी शादी ना थे लदा तुम्हारी शादी भी थी वेंदी। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल है बाबा, तही मेडिकेटेड फार्म

ओके जी, बहुत ही प्यारा सा मेशअप यहाँ पर प्रोग्राम के जरा लिस्ट में मौजूद है, आप एंजॉय करेंगे. साथ साथ मैं जरा आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ताकि जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुना स्टार्ट किया उनको पता चले कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के क्या फायदे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के फौरन बाद ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो सिर्फ दो रातों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ दो रात ही अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है, और ये जो चीजें हैं ना विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स, ये बड़े बड़े महंगे महंगे जो फेशियल्स होते हैं ना, उनके अंदर इन चीजों की एडिशन की जाती है. तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम है लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो एक फेशियल वाले मिलेंगे. तो अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बातों तक ये चीज महदूद है, अगर आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो वाकई आपको वो जो ना रिजल्ट मिलेंगे जो कि आप लोगों को बताए जा रहे हैं. क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है. तो आप बड़े लकी हैं कि आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में पता चल गया है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिए. अगर आपके घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी खुद की शादी हो रही है, तो लाजमी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ट्राई करके देखिएगा. क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज की टेंशन भी भाई हट जाएगी कि आपके चेहरे की स्किन खराब हो सकती है, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, या फिर कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं. भाई ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही सेफ प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी वो चीजें ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, और जना मेडिकेटेड फार्मूला है. तो जाइए परचेज कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई फायदा उठाइए. अगर आपको ऐसा प्यारा प्रोडक्ट बताया जा रहा है तो मेरा तो दिल कराए कि जल्दी जल्दी से जाइए और परचेज करके आइए और इस्तेमाल कीजिए. अच्छा, ये नाइट प्रोडक्ट है, नाइट क्रीम है, तो इसको रात के टाइम आपने इस्तेमाल करना, दिन के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड किया करें, क्योंकि दिन में आप वैसे भी थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, धूप में जा रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो बस रात का टाइम निकाल लिया करें अपने आपको जरा रिलैक्स करके, अपना फेस वॉश करें डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें और सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है वो फेशियल की चीजें ऐड की गई तो इसको हम रगड़ेंगे फेस के ऊपर अप्लाई करके, तो ऐसा मत किया करें. ये फेशियल की चीजें इसके अंदर एड जरूर की गई लेकिन ये फेशियल नहीं है. तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को नाइट क्रीम की तरह ही इस्तेमाल करेंगे और सुकून से लगाइए, प्यार से लगाइए, खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और नंबर जो आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उसके ऊपर राबता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा यहाँ पर मेशअप आप एंजॉय करें और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस दें जी। अखलाक भाई में सुन रहे हैं, अखलाक भाईजान बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा। और अब्दुल वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई हमारे साथ हैं, भाईजान को खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने कहा अलावा तुम इतना स्टिकर शेयर करी सदान बाबा छो।

0: मेरी क्या बात है। और इसी के साथ चाचा कहते हैं कि सिडो बेटा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम में विटामिन सी एड है या फिर नहीं? नहीं, विटामिन ई बीट्स मौजूद है जनाब, विटामिन सी नहीं। और विटामिन ई बीट्स विटामिन सी से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसका आप यूज कीजिएगा। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जहाँ तू है वहाँ मेरे सही है भाई। अखलाक भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। वैसे आजकल आप क्या बिजी रह रहे हैं कि प्रोग्राम में कम आ रहे हैं? ओके जी, साजिद हुसैन सुब्रो कहते हैं वाह वाह वाह जो सॉन्ग आ है, आप हमें मिठो देरों से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम हो गया आपका भी। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है, शो अच्छा है सिस आपकी तरह, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं रमजान भाई। किशोर भाई कहते हैं अगर किसी इंसान में सारी आदतें एक जैसी हो, सोच एक जैसी हो, तो लोग कहते हैं तेरा और उसका जन्म में कुछ मिनट का फर्क होगा। हाण समझा, हाण मां समझा, हाण समझा। यानी कि हू गडगड पैदा थिया हूंदा इन वजह सां। ओके, सो इन चीज जे बारे में ज्यादा मुखे नॉलेज ना है, दिसनासी अगर या चीज सही साबित थी तपो मा चवना वाकई ठीक है। पर उनखा पेरी तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर छ, तमाम भी इस्तेमाल कंदी त तमाम भी इस्तेमाल कयो। और हिदायतुल्लाह कहते हैं ओके ओके ओके। अब्दुल गफार भाई खुशामदीद आपको भी कहते हैं, आप हमें मेलसी से सुन रहे हैं। नजीबुल्लाह बिरोही भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मोहम्मद जमान कहते हैं कि ये सिंगर आजकल
1: मोहब्बत कई,
0: हां मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई। हर किसी को हक है अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का, तो किसी को टोका मत करे और उसे आप मशवरा दे दे कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर जो रिंकल्स आ रहे हैं उनको तो उनको जरा कंट्रोल में रखे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई आपके चेहरे की जो मतलब उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आते जा रहे, तो उनको भी कंट्रोल में रखेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मतलब बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे।

पठान जी, क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा गाना। अच्छा मोहम्मद तैयब थे बहुत हमारा टॉपिक जो जवाब देने वाला है जे को सही आ है। फरमान अली हमें सुन रहे हैं, फरमान भाई हमें घोटकी से सुन रहे हैं, फरमान भाई को वेलकम कहते हैं। फरमान भाई आप घोटकी में जाइएगा और वहाँ से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है। मिस्किन जमाली हमें सुन रहे हैं उस्ता मोहम्मद से, हाजी अल्लाह बख्श जमाली, पहलवान अली जमाली, मोहम्मद बख्श जमाली, भांजो मोहब्बत प्रोग्राम बुधुपया। और वसीम भाई तुम्हारा गाने जी फरमाइश कैया पर थोड़ी लेट कैया, सो यो गानो असा सुभाने बुधंदासी न बल्कि बेडी बुधंदासी, सुभाने जी सुभाने बुधंदासी। तो सुभाणी त जुमो आहे न।

अच्छा ऐसे निगत जी आवाज में भी हुयो शगो गानो मुखे खबर नाही। रमजान अली हमें सुन रहे भाई, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए ठीक है। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।

0: अच्छा रमजान भाई, आपने जुबा की मुझसे पूछा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप सिर्फ मुझसे मेरे बारे में पूछा करें। मैं पूरी दुनिया से बेखबर इंसान हूँ, तो बस मुझसे मेरे बारे में बातें पूछा करें। और उनका अलावा
1: में
0: तो हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।
1: जो प्यार समझी पसंद क्यों से।
0: और सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी जी वेलकम कहते हैं। किशोर भाई कहते हैं अदा जिनकी शादी थी भैया चाहुना जी वरी थी, अगर हो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए तो हाँ बिल्कुल चांसेस था।

0: अलीशा कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमें आपका जो सिटी है ना ये मुझे जरा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से ही आप कहती हैं कि वहाँ पर नहीं मिल रही है। मैं जो आपका ये कमेंट है ना ये जरा मैं इसको भेज देती हूँ अपने जरा ग्रुप के अंदर, तो पता चल जाएगा कि आपके यहाँ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। ठीक
1: है,
0: अलीशा आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, मालूमात लीजिएगा कि वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, वरना हम तो अवेलेबल करा ही देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ
1: हैं।
0: अच्छा रिजवान भात जो गानो पंज बजे वाले प्रोग्राम में लाजमी हलाइंदम तां अचो न अचो पर तां जो गानो लाजमी हलंदो, सो थैंक यू सो मच तां सां गॾु मौजूद आहियो। अच्छा फजली कहती हैं कि शादी करनी चाहिए बट छोटी एज में नहीं, सिंगल बंदा अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरी छोटी उम्र में शादी हुई, कम से कम 30 या 35 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए थी। भाई मानू जेके ना जीअण हराम करे छॾनि था। हाणे मुंहिंजी 25 साल उमिरि आहे, मतिलब एॾो सॼी फैमिली मतिलब दोस्त हर कोई उन जे वात में आहे, शादी करे थी करी शादी करे भाई लोग जीने ही नहीं दे रहे, तो 30 साल त मतिलब इलाही परे आया कर लेनी चाहिए मुझे लग रहा है।
1: सदा दिल मेरा
0: सबका फेवरेट टॉपिक यही आ

बिल्कुल जी, अड़ी दिल कारे कना सी, पर दिल के थोड़ो साइड ते रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठी अचो। सही आ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जडे ता वठी ना न तवा ने चेहरे जा सब प्रॉब्लम्स दूर थी ना, ता पाणी चोना वाह सही वाह असा पिना छो न पया वठी चो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जला हर जगह ते असा अवेलेबल कराई छडी आहे। सब का पेरी ता पाने करीबी जनरल स्टोर्स ते वणो ओता मालूमात वठो, आई ता के खबर पेजी वेनी ता किथे किथे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे। अगर ता के नबी खबर पती ता जेके नंबर ता के प्रोग्राम बुधाया वेना है ना, उने नंबर ते तवा राबतो करी वठना कयो या कॉल कना कयो या मैसेज कना कयो, भाई साहब का पूछो भाई साहब किथे किथे अवेलेबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जी असा वठी सकूं, असा इस्तेमाल करे सकूं, असा सोना थी सकूं।

जी बाबा पूरा 25 साल है प्रश्न ना है शाही ना ऐसी देखा आई एम नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही मनो न मनो और उन खा अलावा फहीम भाई तुम गानों के चो तो असा ना है वणंदो भला भला गाना फरमाइश कंदा कयो तो छो न वणंदा एसन तां लगायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा शादी कयो न कयो तां जो पर्सनल मैटर आहे मोहम्मद समान कहते ये एक मासूम लड़की का सवाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितने दिन लगाने के बाद शादी हो सकती है भाई उसको बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम रिजल्ट्स तो आपको 2 दिन बाद ही देगी लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शादी कब करेंगे

जी चाचा अपना ख्याल रखिए और बस ख्याल रखिए। चलिए हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है तो आप लोगों से इजाजत लेते हैं और हजार बात थैंक यू सो मच तांजु मोहबित हुआ और तालु मरी बात तांजु मोहबित हुआ प्रोग्राम बुध पया अच्छा आधा कहते हैं कि ॾिस त सही केॾो मासूम अंदाज़ में चए पई मूंखे ख़बर न आहे वैसे जेतिरी तोखे ख़बर आहे ओतिरी शायदि गूगल खे बि न आहे ख़बर इस बारे में पता नहीं था जिस बारे में आपने बात करी तो जो आउट ऑफ सिलेबस होती ना चीजें वो शायद में नहीं उनके बारे में रिसर्च करती बाकी तो हाँ ये चीज है भाई वो केड़ी चीज आ जेका मुखे ना खबर सब मानू अचे मुखा पुछंदा इन बारे में बुधा आई एम वेरी ज्ञानी बाबा सो इंसान है भाई उसको सारी चीजों के बारे में नहीं होता पता ये चीज याद रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और ये चीज बस हाणे ॻाल्हियूं तव्हां सां ख़तम कयूं था पर असांजो साथ ख़तम न थींदो बाबा कॾहिं बि तव्हांजो असांजो मोहबतूं इहे बरक़रार रहंदियूं तव्हांजो असांजो साथ हमेशह बरक़रार रहंदो असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं तव्हां सां गॾु हूंदा सो वरी मिलूं था तव्हां सां 5 बजे वारे प्रोग्राम में पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था ऐं जंहिंजो को फीडबैक रहिजी विया त बाबा माज़रत मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाबाई लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: ये देखे ये लोग हैं, ये देखे ये देखे। ये देखे हे भाव मानू ही ने ए दिसो ए ता दिसो था मानू ही ने मथा भितू टपी आया है ने ए दिसो आणे हे दिसो आही मानू है ने ए बुटू बधी आया है ये नकाब पोश
1: आया ने दिसो
0: यो को भी तरीको ना है मुझे भाई यो को भी तरीको ना है मोबाइल यो छाई यो सुठो कमा हे दिसो हथियार हे मानू दिसो हे राज चार था थे ना हे से नंदा मासूम बार है ना हे नंजो तरीको आ हे दिसो
2: खबरू छो थो हलाई दादू पुलिस धाड़ेल बणजी वही बदमनी बाबत खबरू हलाण ते राधण में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ के घर ते रात की उंदाही में पुलिस की का चादर ए चार दीवारी जो तकदस पाए माल न्याणियों की तजलील घर जा दर भी टोड़े छड़ा मुजफ्फर गोरड़ के घर ते चढ़ाई खिलाफ कलम धरने जो एहतजाज जिम्मेवार पुलिस एहलकारन खिलाफ केस दाखिल करे कार्रवाई करने जो मुतालबो सूबाई गरु वजीर जियाल अंजार साफी के घर ते पुलिस के बिना जवाब चढ़ाई जो नोटिस वरतो एसएसपी दादू के वाके की अणधुरी जांच करे रिपोर्ट देने की हिदायत वरतो एसएसपी दादू के वाके की अणधुरी जांच करे रिपोर्ट देने की हिदायत जियाल अंजार चाहे तो जिम्मेवार पुलिस एहलकारन खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
5: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त, जी जान चारो मसालो ढोरे सेहतमंद, जी जान चारो मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
6: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
7: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616239793।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।
9: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर 03008569।
10: अस्सलाम वालेकुम। अदा
11: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
10: न? अदा
12: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
10: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
11: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
12: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
13: 03013992836।
14: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान तकरार खत्म कराने लाइ पुरउमीद खिते में अमुन के क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखने जे अज़म जो बचाओ न्यूयॉर्क में मीडिया से ॻाल्हाईंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जो समूरो ध्यान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे ते आहे पाकिस्तान जो अमेरिका ईरान छिकताण के खात्मे लाइ सालसे वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि दोस्त मुल्क भी कोशिशनि में सहकारी आहिनि उमीद नाहे छॾी समूरो ध्यान तकरार जे खात्मे ते आहे शर्त पूरा थियण ताईं नाब न हर्मस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं ईरान जो वाज़े ऐलान सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं ईरानी सदर सुप्रीम लीडर जे सलाहकार चयो आहे त अमेरिका या इसराइल वीहर हमिलो कयो त जंग हदी समुंड ताईं पखेड़जी वेंदी ईरान एटमी हथियारनि तां हथ खणे त अमेरिका तेहरान सां जंग ख़तम करे सघे थो अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका लाइ वॾो मसलो एटमी हथियारनि वारो आहे ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रंप बि तेहरान सां मुआदो करे सघे थो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चे सां मुलाक़ात ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं परॾेही खाते मूजिबि इसहाक डार ऐं अब्बास इराक़चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमुनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते बि थी आहे ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सिफ़ातकारीअ ते ज़ोर भरियो फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ केपीके में कार्रवाइयूं जारी हुज़र उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान 8 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फोर्सिस कार्रवाई दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे कामयाबी सां तबाह कयो दहशतगर्दनि मस्जिद खे ढाल तौरु इस्तेमाल करण जी कोशिश कई सिक्योरिटी फोर्सिस मस्जिद जो तक़दुस बरक़रार रखंदे दहशतगर्दनि खे कामयाबी सां निशानो बणाए जहनुम भेड़ो कयो मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हथियार बि हथ कया विया आहिनि

0: पाकिस्तान अंदर थींदड़ दहशतगर्दीअ में अफ़गान शहरनि जे मुलविस हुजण वारियूं वधीक शाहिदियूं साम्हूं अची वयूं। मस्तोंग में मारिजी वियल दहशतगर्दनि में अफ़गान शहरी बि शामिल। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द ख़लील अहमद वटां अफ़गान कार्ड ऐं ॿिए दहशतगर्द ज़ुल्फ़कार अरब अबू उमर वटां अफ़गान हुजे इदारे जे डी आई जो कार्ड मिलियो। 2025 में अफ़गान तालिबान ऐं भारतीय हुजे इदारे राह विच में अठ जोड़ जो इंकशाफ़ थियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बासलाहियत नौजवाननि जी सलाहियतनि ते फ़ख़ुरु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि, पक आहे नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी। कराची इंडस्ट्री एमक्यूएम जी हड़तालनि सबब बंद थी। हिन वक़्त बि एमक्यूएम लसानियत जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शहजी लीना मेमण चयो आहे त कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एसएचओज खे चूंडे मारियो वियो। एमक्यूएम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक जी सदारत हेठि अहम इजलास। रेलवेज पारां रोडनि जी बंदिश जी सूरत में तेल जी फरामी लाइ वधीक बोगियूं फराहम करण जी ख़ातिरी। वफ़ाक़ी वज़ीर पारां तेल वारे शहरनि जी बरवक़्त फरामी यकीनी बणाइण लाइ अॻुवाट क़दम खणण जी हिदायत। तेल जी निगरानी लाइ ओगरा पारां कंट्रोल रूम बि क़ाइम। अली परवेज़ मलिक चयो त अटक खे तेल वारियूं शयूं पहुचाइण वारे अमल खे यकीनी बणायो वञे। फ्यूल रिलीफ खां शहरनि खे महरूम रखंदड़ पेट्रोल पंप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जे केपीके हुकूमत ते तनक़ीद। केपीके पुलिस एक्ट में तरमीमनि खे बि रद्द करे छॾियो। तलाल चौधरी चयो आहे त केपीके जी पुलिस एक्ट में तरमीम सां पुलिस तबाह थी वेंदी। केपीके हुकूमत होश खां कम वठे। पीएसपी रूल्स में तरमीम जो इख़्तियार केपीके वटि नाहे। आईजी जा इख़्तियार वापसि वठे। कमांड खे तबाह कयो वियो आहे। एक्ट में सियासत आहे। वफ़ाक वटि पुलिस एक्ट में तरमीम बाबति ऑप्शन्स मौजूद आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम।

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो। एयर कंडीशन, क्लाइ स्पीड, वाई फाई, तजुर्बेकार तालीमी माहौल, खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जबकि सूज और मॉइस्चराइजिंग में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा

0: खुशखबरी, लेजर गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर के शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सोनी अज तो ढी खुश थी लगे।
2: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुख्य भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थियन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अज।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: कोशिशन में सहकारी आहिन उम्मीद नाहे सदी समूरो ध्यान तकरार जे खात्मे ते आहे। शर्त पूरा थियण ताईं नाप नाए हरमोस खुलंदो नई गालियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान, सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त गालियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार याहिया रहीम सफ़वी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़िजी वेंदी।

0: ईरान एटमी हथियारनि तां हथ खणे त अमरीका तेहरान सां जंग ख़तम करे सघे थो। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमरीका लाइ वॾो मसइलो एटमी हथियारनि वारो आहे। ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि। इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रंप ई तेहरान सां मुआदो करे सघे थो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी सां मुलाकात। बितरफ़न लाॻापन ऐं ख़ते में अमन वारियुनि कोशिशुनि ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिब इसहाक़ डार ऐं अब्बास राख़्ज़ी में मुलाकात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमन जे क़याम लाइ सफ़ारतकारी ते ज़ोर भरियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियुनि ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरे वरितियूं। शहबाज शरीफ़ चयो त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख्रु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि। पक आहे नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा। हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टीवी सर्विस सां को फ़र्क़ न पवंदो। एम क्यू एम ॿीहर लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सिंध वज़ीर शर्जील नामेमण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री एम क्यू एम जे हड़तालनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एसएचओस खे चूंडे चूंडे मारियो वियो। एम क्यू एम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां के पी जी तरमीमी पुलिस एक्ट खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ही एक्ट अञा काबीना मंज़ूर कयो आहे। के पी हुकूमत होश खां कम वठे। वफ़ाक़ वटि पुलिस एक्ट बाबति घणा ऑप्शन मौजूद आहिनि। एक्ट सुप्रीम कोर्ट में बि चैलेंज थींदो। के पी हुकूमत रुगो आई जी खां अख़्तियार वापसि नाहिनि वरिता, पर कमांड खे ई तबाह करे छॾियो आहे। पुलिस एक्ट में तरमीम सियासी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
7: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0300-54-4456
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम करड़ जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
6: रोशला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली एयर कंडीशन और फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीजे खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
9: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
9: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाब 03003204372 आई 02424600।
11: अस्सलाम वालेकुम अदा।
12: वालेकुम अस्सलाम अदा नाही
11: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले
12: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
11: ना अदा
9: यार आज कल शरण तोड़े गोठ मेरापुर FM 94 ही हले थो मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
11: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
12: हां दा कारोबारी इश्तिहारात मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
12: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
13: 03013992836।
14: मेहरापुर की है फॉर

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थप्पर 03-00-33-85569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदियो तम पर हले ही न थई न
4: थोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मजे दुकान जी
3: बेटा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज लानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03-01-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 5:40 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शेवर नहीं हर मानत होती है इसीलिए Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया compliant gold based financing जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की financing 4 साल तक की मुद्दत के साथ Bank Islam gold based financing से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
2: अपना शहर अपना और मेहराबपुर की ये FM 94

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान जो समूरो ध्यान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे ते आहे पाकिस्तान जो अमेरिका ईरान चिकटाण के खात्मे लाए सालिसी वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि दोस्त मुल्क भी कोशिशन में सहकारी आहिनि उम्मीद नाहे छॾी समूरो ध्यान टकराव जे खात्मे ते आहे

शर्त पूरा थियण ताईं नाप नाए हरमूस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान, सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार याहिया रहीम सफ़वी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़जी वेंदी। मुआशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे। वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तम करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तम थी वयूं आहिनि। हाणे को बि मुल्क ईरानी जहाज़नि खे लैंडिंग करण न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सदु ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां GHQ जो दौरो, फील्ड मार्शल रासिम मुनीर सां मुलाकात। ISPR मूजिब मुलाकात दौरान वितरफ़नि लाॻापनि इलाक़ाई अमन ऐं सलामती ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल रासिम मुनीर चयो त पाकिस्तान मालदीव सां लाॻापन खे अहमियत ॾियूं था। लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। मालदीव जे स्पीकर पाकिस्तान जे इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदार जी साराह कई।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर-ए-आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरे वरितियूं। शहबाज शरीफ चयो त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख़्रु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि, पक आहे नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलतूं ॾींदी। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टीवी सर्विस सां को बि फ़र्क़ु न पवंदो। एमक्यूएम ॿीहर लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री एमक्यूएम जी हड़तालनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एसएचओ खे चूंडे चूंडे मारियो वियो। एमक्यूएम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

में अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, इहो वरी बि नोट करे छॾींदा। ऐं हफ़्ते जा टे ॾींहं स्पेशली जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं, जी हा बिल्कुलु, स्पेशली टे ॾींहं जुमे जा, हफ़्ते जा जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा जेकी आहे सो मरीज़ खे वठणी पवंदी आहे। असांजी क्लिनिक नाले जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण। क्लिनिक जी एड्रेस अव्हांखे बख़ूबी ख़बर आहे त कोटड़ी रोड साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप। टाइमिंग सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं, हिकु ॾींहं जो। ऐं टाइम जो थोरो ज़रूरु तव्हां नोट में रखंदा कयो, छो जो हीअ तमामु ज़रूरी आहिनि। घणा शाम जो 6 बजे पहुचंदा आहिनि, पोइ क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, या के अंगारे जो ॾींहुं ईंदा आहिनि ऐं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, त इहे ॾींहं ऐं इहो टाइम ज़रूरु जेको आहे सो नोट में हुजे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं, छो हू बि जेको असांजो हीउ प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, सिहत जी ॻाल्हि मूंखे ख़बर आहे त हिन में ई हिकिड़ो अवेयरनेस जो प्रोग्राम आहे, को एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम न आहे। इन जे करे कॉलर्स जेके असांजा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे इहा ई दरख़्वास्त हूंदी आहे त महिरबानी करे हिन नंबर ते ज़रूरी कॉल जेको आहे सो कंदा कयो, जंहिं मां अवां लाभ हासिलु करे सघो, जंहिंसां तव्हांजो बि टाइम ख़राबु न थिए ऐं ॿिए जो बि टाइम ख़राबु न थिए। जेकॾहिं मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं, हिन ते मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत असां बयानु कंदा आहियूं सिहत जे मुतालिक़, त जीअं कंहिंखे बि का अहिड़ी बीमारी अची थी वञे त हू हुन मां अंदाज़ो लॻाए सघे त हीअ कहिड़ी बीमारी आहे या हिन जी फस्ट एड असांखे छा थींदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां ई असां 300,000 जेको आहे सो दोस्तनि खे मुफ़ीद मशवरा ॾींदे काफ़ी सारो टाइम थियो आहे, काफ़ी फ़ाइदो पइजी चुको आहे। मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं था, तव्हां ॾिठो हूंदो त घणनि जे जिस्म में जेको आहे सो न चमड़ी में ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि, ॾाढो परेशान हूंदा आहिनि, यानी हिकिड़ियूं नरम नरम ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि, किथे बि थी सघनि थियूं जिस्म में, यानी कंहिंखे जेको आहे कच्छनि जे विच में हूंदी आहे, कंहिंखे ॾोरे में हूंदी आहे, कंहिंखे छातीअ में हूंदी आहे, कंहिंखे पेट में हूंदी आहे, कंहिंखे पुठी में हूंदी आहे, कंहिंखे टंग में पिनी में हूंदी आहे, पोइ ॾाढो परेशान थींदा आहिनि। लेकिन हूंदियूं उहे नरम ॻोड़ियूं आहिनि, ऐं जॾहिं हुननि खे जेकॾहिं ज़ोर ॾिबो त हिकु हंधि खां वरी ॿिए हंधि जेको आहे सो जीअं नरम बॉल हूंदो आहे, इन इन मां जेको आहे सो इहे ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि। इन खे मेडिकली लैंग्वेज में जेको आहे सो लिपोमा बीमारी, लिपोमा डिज़ीज़ जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। ऐं इहा का जेको आहे सो अहिड़ी का ख़तरनाक बीमारी कान्हे का, सिर्फ़ु जेको मरीज़ खे हूंदा आहिनि उहो लुक जेको आहे सो थोरो ख़राबु लॻंदो आहे त हीअ जेको आहे सो ॻोड़ियूं जेको आहे सो छो थियूं आहिनि, या इन वहम में हूंदो आहे त इहे ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि। घणा पोइ उन्हनि खे दोस्त वहम ॾियारींदा आहिनि त इहे कैंसर जूं ॻोड़ियूं आहिनि, लेकिन अहिड़े कंहिं बि क़िस्म जी ॻोड़ी इहा न हूंदी आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ी चर्बीअ जूं ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि, जंहिंखे मिसाल जंहिंजूं वजूहात कुझु ईअं हूंदियूं आहिनि त कंहिंखे को लिवर प्रॉब्लम हूंदो आहे, या कंहिंजो फेटी जेको कंहिंखे फेट वधियलु हूंदो आहे, यानी कोलेस्ट्रोल वधियलु हूंदो आहे, या कंहिंखे ख़ानदानी जेको आहे सो प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, उनजे करे जेको आहे सो उन्हनि में इहे कंहिंखे ॻोड़ियूं जेके आहे सो यानी ॾिठियूं वेंदियूं आहिनि, या वरी जेको आहे सो गैसिस जे करे बि जेको आहे सो ईअं थींदो आहे। लेकिन या किन किन औरतुनि में वक़फ़े जे करे बि जेको आहे सो इहे ॻोड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि, लेकिन अलर्ट उते थींदो आहे या जेको आहे सो उनखे ख़ासि करे तवजह तॾहिं ॾिनी वञे जॾहिं उहे ॻोड़ियूं सख़्तु हुजनि, सूर हुजे, त पोइ उन्हनि जी बायोप्सी वग़ैरह कराइबी आहे, त पोइ जेको आहे सो यानी उनखे यानी नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। बाक़ी जेको आहे सो लेकिन इन में बि घणा जेको आहे सो जॾहिं डर्मेटोलॉजिस्ट वटि पहुचंदा आहिनि त पोइ हुननि जो ऑपरेट करे ऐं पोइ इहे ॻोड़ियूं जेको आहे सो कढी छॾींदा आहिनि। लेकिन इन्हनि ॻोड़ियुनि जो, नरम ॻोड़ियुनि जो बि असां वटि होम्योपैथिक में कामयाबु इलाजु मौजूदु आहे। जॾहिं होम्योपैथिक जी दवा जो कोर्स थींदो आहे त इहे ॻोड़ियूं अज़ु ख़ुदि उते ई ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, बग़ैर कंहिं सर्जरी जे, बग़ैर कंहिं कट जे, बग़ैर कंहिं इंजेक्शन जे, बग़ैर कंहिं ऑपरेशन जे। लेकिन टाइम थोरो लॻंदो आहे, बिल्कुलु इहे जेको आहे सो सही थी वेंदी आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधायूं त इन्हनि इहे जेके थींदियूं आहिनि, इहे गर्दन में, घणनि जे पेट में, घणनि जे जेको आहे सो पिनियुनि में, इन्हनि जॻहियुनि ते थींदी आहे, लेकिन इन में का तकलीफ़ न थींदी आहे। इहा जेको आहे सो जेकी थींदी आहे चर्बी जी, जीअं मां ॻाल्हि कई त ॻोड़ियूं हूंदियूं आहिनि ऐं इहे फिरंदियूं गिरंदियूं आहिनि गोश्त में, चमड़ीअ जे खल में जेको आहे सो इहे थींदियूं आहिनि।
सो आई इन जो जेको

0: जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त केतिरियूं थींदियूं आहिनि 2 सेंटीमीटरनि ताईं जेको आहे सो इहे ॾिठियूं वियूं आहिनि। सो इनखे बीमारी जो नालो हिकु दफ़ो ॿीहर अवांखे ॿुधायूं। घणा ट्यूमर्स बि चवंदा आहिनि या लाइपोमा इन जी डिज़ीज़ जो नालो आहे जेके असां तव्हांखे हाईलाइट कयोसीं। सो जॾहिं बि कंहिं दोस्त खे अवां या मिट माइट खे का अहिड़ी तकलीफ़ ॾिसो त परेशान थियण जी ॻाल्हि कान्हे का, तव्हां सिधो जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा कोठड़ी रोड ते हलिया अचो, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते। इनशाला ताला अवां जी इहा ट्रीटमेंट कई वेंदी ऐं अव्हांजो बिल्कुलु बग़ैर कंहिं कट जे इहा गोरी ख़तमु थी वेंदी। जी साईं,
1: तमामु घणी महिरबानी सर। माशाल्लाह तमामु हिकु
0: जी
1: बहितरीन ॼाण ॾिनी सर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटोरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछरु आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 91 8051।

आयो असाने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-2196-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियों जहा माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वदन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरणियों बारन में कद जो न वदन औरतुन ए मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा आए। असि प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जी क्लिनिक टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 11 खां शाम 5 वगे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि।

अवां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। इंतकाल करे अवां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन गलो नज़लो निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघु, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।

ऐं आउं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8151 0301-96-8151।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अमां सभिनी ॿुधंदड़नि खे खुश आमदी चऊं था। प्रोग्राम आहे सेज ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196851 डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं बदनपोटा पेट्रोल पंप कोटेडी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछरु आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: प्रोग्राम में शामिल थे असो लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमार जहा माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पित्ते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा संदन जोड़न गोडन जो सूर कुंडरक जो सूर नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरणियों बारन में कद जो न वधन औरतुन मर्दन के पोशीदा बीमार जो कामयाब इलाज कंदा है।
1: मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां जीअं मां ॻाल्हि कई त ॾिसो मिसाल हिकिड़ो असां ॿुधंदा आहियूं त नक जी हॾी वधी वञे या नक जी हॾी ते गोश्त वारी अचे उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे होम्योपैथिक में कामयाबु ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। त बिल्कुलु होम्योपैथिक में बग़ैर ऑपरेशन जेको आहे सो इन जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। बेसिकली जेकी अव्हांखे एलर्जी रहंदी आहे जंहिंजे करे नज़र प्लेप्स ठही वेंदा आहिनि उनजे बग़ैर ऑपरेशन जेको आहे सो उनजे करे खोड़ सारा ॿिया प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि। ज़ाहिर या त उहो रेशो जेको आहे सो वरी तव्हांजे गले जी तरफ़ किरंदो आहे या रेशो अव्हांजे कननि जी तरफ़ वेंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो अव्हां ॿुधण में अव्हांखे घटि ईंदो आहे अव्हां जेको आहे सो गले जी तकलीफ़ थी वेंदी आहे या ज़ुकाम न छॾींदो आहे या बूसट जेको आहे सो थी वेंदो आहे इहो गोश्त जेको वधी वेंदो आहे जंहिंजे करे तकलीफ़ पेशंट खे तमामु घणी थी वेंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां लास्ट टाइम जेको टॉन्सलेट्स जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं त टॉन्सलेट्स बि ईअं ई ऐं हूंदा आहिनि इनलॉज थी वेंदा आहिनि त मरीज़ खे ॻाल्हाइण में तकलीफ़ थी वेंदी आहे मरीज़ खे यानी बुखार वग़ैरह या सूर जी शिदत थी वेंदी आहे या उनखां अलावा असां जेके ॿियनि मर्ज़नि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा आहियूं जोड़नि जे हवाले सां जिन खे पुराणे जोड़नि जी तकलीफ़ हूंदी आहे उनजो कामयाबु होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। या रगुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं त जीअं स्पॉन्डिसाइटिस जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा आहियूं जेके मोहरा हूंदा आहिनि गर्दनि जा उहे जॾहिं कमज़ोर थी वेंदा आहिनि या उन्हनि में तकलीफ़ अची वेंदी आहे या उहे डैमेज थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जो कामयाबु इलाजु होम्योपैथिक में कयो वेंदो आहे। या हिप जॉइंट पेन जॾहिं थींदो आहे चेल जो सूरु थींदो आहे त उनजो बि कामयाबु इलाजु उन जा बि कई सारा असबाब हूंदा आहिनि सबबु हूंदा आहिनि। या शाइटी का पेन कंहिंखे कुन रग जो सूरु जेके थींदो आहे या लंगड़ी जो दर्द चवंदा आहिनि उन में बि कामयाबु ट्रीटमेंट कई
0: तव्हांजे मौज़ू खे जी सर बरक़रार रखंदासीं। हिन खां हिकु कॉल आहे हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी अदा कह रहे किथां खां?
2: सर कोटड़ी कमी अलाउट मेरे को लाचारी का गुलाम परी लाचारी अलग पे सर।
0: जी अदा छा पूछना चाहिंदा डॉक्टर साहब का?

0: पर मूंखे ज़रे घटि 6 महीना थी विया आहिनि, ज़ुकाम थियो आहे, ज़ुकाम छॾे ई कोन थो, ऐं ॿियो त हा ते बूफट थिए थो, सम्झी सघ।
1: अच्छा,
2: पुराणो जुकाम जीअं कोटड़ी कबीर तमामु वेझो आहे मेहरापुर शहर खे, ऐं ख़ासि करे जेको आहे सो इन रस्ते सां ई असांजी क्लिनिक लॻे थी स्पॉट ते, त जेके दादे खे चवंदासीं रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर रहंदो। ऐं उनखां अलावा जी ॻाल्हि कईसीं त नज़लो ज़ुकाम इहो पुराणो थी वेंदो आहे, उन जूं खोड़ सारियूं वजूहात थींदियूं आहिनि, कंहिंखे मोरूसी हूंदो आहे, कंहिंखे जेको आहे सो यानी एलर्जी रहंदी आहे पुराणी, या साइनोसाइटिस थी वेंदी आहे, इंफ्लुएंज़ा हूंदी आहे उनजे करे। बहरहाल उहो बि जॾहिं पेशंट सामने ईंदो आहे त उनखे ॾिसी करे उनखे ट्रीटमेंट कयूं, या तंहिंखे बि चवंदासीं रूबरू ॾेखारे सघंदा। बाक़ी फ़िलहालु तंहिंखे हिते ॾस पंधु इहो ई ॾेई सघूं था त रोज़ाना राति जो पाणी गरम करे उनजी बाफ़ वठे, पाणी गरम करे लूणु विझी उन सां नकु साफ़ करे, गराड़ा करे, अदरक वारी चांहि पीए, इनशा ताला उन सां काफ़ी अफ़ाको ईंदो आहे, या पाणी जा गराड़ा जेको आहे सो उनखे मुफ़ीद पहुचाइनि था। थधो पाणी, सणबी शइ, तरियल शइ, चांवर, खटी शइ इहे इस्तेमालु करणु बंदि कनि। बहितर हुनजो ट्रीटमेंट ऐं हली वई आहे त रूबरू ॾेखारे वञनि। जी साईं,
1: जी सर, पंहिंजे मौज़ू खे कंटिन्यू रखंदासीं।
2: असां कईसीं पिए मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां, जीअं शष्टिका जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं, कुनर जे हवाले सां, उनखां अलावा जीअं गर्दन जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं, या जेके उहे असांजूं वॾड़ियूं भेनरियूं जिन खे चेहरे ते मोहिड़ा या चेहरे ते दाग धब्बा छायूं थी वेंदियूं आहिनि, या चेहरे ते वार अची वेंदा आहिनि जिस्म ते, जेके अनवांटेड हेयर्स चइबो आहे, उनजी बि असां वटि कामयाबु ट्रीटमेंट मौजूदु आहे बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जी। मज़े जी ॻाल्हि हिकिड़ी आहे, असांजे इलाज होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में, होम्योपैथिक तरीक़े इलाज हिन वक़्तु दुनिया में ई मशहूरु आहे, ऐं दुनिया जा टॉप लेवल जा जेके जेके हुकमरान लेवल जा जेके ऑफिसर्स तबिके जा हज़रात आहिनि उहे असांजी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट खे यूज़ कंदा आहिनि। उहे इन जे करे उनखे ज़्यादा तरजीह ॾींदा आहिनि त हिन दवा जो को साइड इफ़ेक्ट न आहे, ऐं साइड इफ़ेक्ट इन जे करे न आहे जो होम्योपैथिक दवा जेकी आहे सो हिकिड़ी नेचुरली दवाई आहे, कुदरती दवाई आहे, जड़ी बूटियुनि मां ठहंदी आहे, हर्बल्स जेको आहे सो जेके ख़ासि हर्ब्स हूंदा आहिनि उन्हनि मां जेको आहे सो दवाई ठहंदी आहे, केमिकल्स मां दवा न ठहंदी आहे, हिन जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। इन जे करे इनखे तरजीह ॾिनो वेंदो आहे इन इलाज खे, ऐं इन इलाज में तव्हां ॾिसो था त जेकॾहिं बग़ैर ऑपरेशन जे हिकिड़ी अहिड़ी मूज़ी अहिड़ी वॾियुनि बीमारियुनि जो इलाजु मौजूदु आहे, जंहिंमें पहिरें बीमारियुनि जो असां ज़िक्र कयोसीं, जीअं हाणे बीमारी जी ॻाल्हि कयूं त गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, त बग़ैर ऑपरेशन जे बग़ैर यानी हिकिड़ो तव्हांजो ॾिसो पिते जी पथरी में पिते खे रिमूव कयो वेंदो आहे, गॉल ब्लैडर रिमूव कयो वेंदो आहे, हीअ त चइजो उनमें फेट जी जेको आहे सो स्टोन हूंदी आहे जेकी असांजी दवा जे रस्ते उहा ॻरी वेंदी आहे, ऐं उनखे को बि रस्तो न हूंदो आहे। घणनि खे इहो ज़हन में गुमान हूंदो आहे या घणा इहो सुवालु कंदा आहिनि त पिते जी पथरी कीअं निकिरंदी आहे जॾहिं त पितो सॼो बंदि हूंदो आहे। बिल्कुलु असां बि इहो ई चयो आहे त कॾहिं बि हुन चयो आहे त पिते जी पथरी निकिरी वेंदी आहे, असां इहो चयो आहे त पितरे जी पथरी ख़तमु थी वेंदी आहे, ॻरी वेंदी आहे, बाक़ी गुर्दे जी पथरी जेको आहे सो निकिरी वेंदी आहे, मसाने जी पथरी निकिरी वेंदी आहे, ऐं उहे बग़ैर ऑपरेशन जी जेको आहे सो इन जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। किनि घणनि जी तिरी वधी वेंदी आहे, स्प्लीनोमेगोली जेके चइबो आहे, तिरी वधी वेंदी आहे जंहिंजे करे प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि, ऐं मरीज़ जेको आहे सो यानी हुनजो पेट सुॼी वेंदो आहे, पेट में पेट भरिजी वेंदो आहे, पेट में पाणी पइजी वेंदो आहे, फैटी लिवर थी वेंदो आहे, घोड़ सारा लिवर सां कनेक्टेड प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि, ऐं उनजो बि असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जे बग़ैर कंहिं ॿिए साइड इफ़ेक्ट्स दवा मौजूदु हूंदी आहे जेकी मरीज़ बिल्कुलु ठीकु रहे। हा, के पेशंट्स असां वटि अहिड़ा ईंदा आहिनि जेके लास्ट स्टेजिस में ईंदा आहिनि, घणो टाइम जेको आहे सो अरसो इन बीमारी में रही करे ॿियनि खे ॾेखारे करे करे, ऐं जॾहिं बिल्कुलु ई जॾहिं उतां बि उन्हनि खे जवाबु मिली वेंदो आहे, ऐं वधीक ॾिसो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, ज़िंदगी मौत हयाती अलाह ताला जे हथ में आहे, जॾहिं अलाह ताला जेको आहे सो कंहिंखे ज़िंदगी ॾियणु चाहे त कहिड़ो बि दुनिया जो को बि डॉक्टर हुजे, केरु बि हुजे, उनमें कुझु नथो करे सघे, ऐं जॾहिं उनजो हयाती पूरी हूंदी त उनखे बि केरु जेको आहे सो कुझु नथो करे सघे। इन जे करे एक गाल ही आई है बी गाल जदे असन दिसनयू त पेशेंट इनन सारन एड़े पछाड़ी स्टेजेस में होदो है त पो मजबूरन असन के भी मरीज के रेफर करनो पंदो है या जवाब देनो पंदो है सो इन जे करे जदे भी मा त या गाल कंदो है त जदे भी के के भी अड़े किस्म की तकलीफ़ थियन थी तो जल्द अज जल्द उन में डिले न करे मानो लेट न करे चाहे कड़े भी डॉक्टर के जल्दी दिखाने जी करे जल्दी इलाज कराए उन में सुस्ती न करे एलोपैथिक में फ़र्क न थो पे तो होम्योपैथिक की तरफ रुजू करे जल्दी अची उत ट्रीटमेंट जो है सो उनकी वन तो वह बेहतर होंगी है असा वट के अड़ा केसिस आया भी आन लेकिन पो उन में अल्लाह ताला उनके शिफा भी दिनी है लेकिन पो खास करे थींदो ही है जदे के फर्क पवंदो है तो हु अध में इलाज जेको है सो बंद करे छदीना है पोए वरी जेको है सो असा वट इंदा है लेकिन तदे लेट थी चुकी होंदी है जदे भई तमा के बेंदा फर्क किथा भी कोन पे पियो आई हाने तमा हते आयो ही इलाज कराण उन में अवा के रिलीफ मिलियो तव्हां उन इलाज खे त कम से कम जेतिरो मतलूबा कोर्स हूंदो आहे ओतिरो त हलायो घटि में घटि जिते माण्हू पहिरियां साल साल गुज़ारे आयो लखे रुपया ख़र्च करे आयो हाणे हिते जेकॾहिं ॿ टे महीना केरु ॿ टे हज़ार कोन थो ख़र्च करे सघे त उनखे माण्हू छा थो चई सघे सो इहो जेको आहे सो इहा हूंदी आहे हिकिड़ी यकीन जी ॻाल्हि हूंदी आहे ॿियो घणा वात घणियूं ॻाल्हियूं असां वटि मुआशिरो बि कुझु अहिड़ो थी चुको आहे ऐं कुझु यानी को पेशंट अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिनखे जेकॾहिं फ़र्क़ु पए थो त अॻिलो चवंदो भई वरी हे इलाज कीअं थो कराई हिन मां तोखे हीअं थी वेंदो हीअं थी वेंदो त बहरहाल जेको आहे सो का इंसान ज़ात जी का ॻाल्हि हूंदी आहे कंहिंखे माण्हू कंहिंजो भलो सोचींदो आहे कंहिंखे सही रुख सां कंहिंखे केरु माण्हू लाहे कंहिंखे बि ग़लति फीड न करे यरगुमाल न करे वरगलाए न केरु कंहिंखे कुझु ॾेई नथो सघे त उनखे यानी सिकाए बि न या उनखे जेको आहे सो खसे बि न उन खां घटि में घटि उनखे सही राह ते माण्हू जेको आहे सो असां वटि खोड़ सारा ईंदा आहिनि जेके पेशंट हिकिड़ा त असां वटि उहे पेशंट ईंदा आहिनि जेके असांजी ही नेटवर्क आहे FM नेटवर्क हूंदो आहे FM तां ॿुधी करे ऐं पोइ असां वटि पहुचंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे रिलीफ़ मिलंदो आहे ऐं पोइ उहे ई पेशंट वरी ॿियनि मरीज़नि खे मोकिलींदा आहिनि भई असां बि हितां दवा वठी आयासीं तव्हां बि हाणे हिते असांजे ख़ुदि वठी ईंदा आहिनि साईं असां उन्हनि खे वठी आया आहियूं उहे कोड़ सारा फलाणे हंधि ट्रीटमेंट उन्हनि हेतिरो वक़्तु हेतिरा साल हुननि ट्रीटमेंट कराई आहे लेकिन फ़र्क़ु न पियो आहे ऐं पोइ जॾहिं उहे मरीज़ वरी अलाह ताला जो हिकिड़ो करिणो आहे अलाह ताला जी हिकिड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे उन जा करोड़ अहसान आहिनि असां ते जॾहिं उन मरीज़ खे वरी असां उहा दवा ॾिनी त अलाह ताला जे रब करीम जे अहसान सां वरी उहो मरीज़ बि ठीकु थी वेंदो आहे मां पहिरीं बि ॻाल्हि कई त 100% पेशंट किथां बि ठीकु न थींदो आहे ज़ाहिर आहे की 10% पेशंट असां वटां बि नाउमीद थी विया हूंदा लेकिन इन में बि सॼो रब ताला जो ई जेको आहे सो हिकिड़ी कर्म हूंदो आहे हिकिड़ो रब ताला जो ई कयो हूंदो आहे छो जो जेसिताईं अलाह ताला जंहिंखे जितां चाहे उते शिफ़ा ॾींदो आहे जेतिरी चाहे उतां शिफ़ा मिलंदी आहे सो इन जे करे जेको आहे सो मां ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा कई त होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में को बि नुक़सानु कोन्हे को तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि फ़ाइदो पवंदो आहे जेकॾहिं फ़ाइदो न पवंदो आहे त नुक़सान बि कोन पवंदो इन जे करे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जग जग मशहूरु आहे ऐं ही त अव्हांजी ख़ुशि नसीबी आहे अव्हांजे शहर मेहरापुर में हिकिड़ो जेको आहे सो जर्मन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जी का कई वञे थी जंहिंमें जर्मन जूं दवाऊं बि ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि पाकिस्तानी बि मुयारी दवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जंहिंसां हर मर्ज़ जे हवाले सां ट्रीटमेंट कई वञे थी ऐं कामयाबु ट्रीटमेंट कई वञे थी अलाह ताला जी महिरबानी सां मरीज़नि में अफ़ाक़ बि अची वेंदा आहिनि अलाह ताला जी महिरबानी सां असां वटि खोड़ सारा मरीज़ हिन वक़्त बि एॾियुनि वॾियुनि बीमारियुनि जा अंडर ऑब्ज़रवेशन आहिनि ऐं अलहमदिल्ला हिन वक़्त बि वॾियुनि वॾियुनि बीमारियुनि जा पेशंट असां वटि अंडर ऑब्ज़रवेशन आहिनि जीअं ई जेको हुननि जो कोर्स पूरो थींदो ऐं हू हींअर सिहतयाब थी चुका आहिनि 70% जीअं ई हू ठीकु थींदा त उन्हनि जा व्यूज़ उन्हनि उहे इनशाला ताला ऑनलाइन अची अव्हांखे जेको आहे सो पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराईंदा ॿुधाईंदा त असांखे पहिरियां कहिड़ी तकलीफ़ हुई केतिरी तकलीफ़ हुई ऐं हाणे जेको आहे सो असांखे इन होम्योपैथिक दवा जे वठण मां केतिरो फ़ाइदो आहे सो इहो जेको आहे सो मरीज़ तॾहिं ॿुधाईंदो आहे अॻिलो जॾहिं हुनखे फ़ाइदो पवंदो आहे सो अव्हां सभिनी खे इहा ई दरख़्वास्त आहे त जॾहिं बि बीमार थियो त होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जेको आहे सो कराईंदा कयो होम्योपैथिक दवा जो को भी साइड इफेक्ट को नंबर असो 24 कलाक ही आन हों जरूरी कॉल करनी होंगी कुछ पुछणो हों नंबर वो है तो ये नंबर जरूर नोट करा घर की शिकायत होंगी है तो नंबर जो है सो तेजी से अनाउंस है इन कर पान नंबर नोट करा तो जरूर नोट कदा 0301 0301 9196 851 0301 219 6851 जी हाँ हफ्ते जहा छ ढी अवे एक दफो बीहर नोट करवाज शहर मेहरापुर में सामू वधण पुटा पेट्रोल पंप ते क्लिनिक है सुबह जो टाइमिंग 11 बजे का शाम जो 5 बजे तीन हफ्ते जहा छ ढी जैमें जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी सूमर जो ढी अंगारो क्लिनिक बंद होंगी है बाकाया बया ढी जो बुदायासी अरबा खमीस यो ढी जो सो क्लिनिक खुलल होंगी है जैमें टे ढी स्पेशली जुमे जो छंछर जो आचर जो चेकअप फीस फ्री होंगी है जी सर
1: तमाम घड़ी मेहरबानी सर प्रोग्राम है सेहत की गाल असांजे स्टूडियो में मौजूद आन डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब एक कॉल की तरफ असलाम जी अस्सलाम वालेकुम जेदा कह रहे किथा खां
3: बार मुलाकात कलंदर वैक्सीन अब तो कर आया
1: जी अदा छा पूछन चाहंदा डॉक्टर साहब का
3: साइंस ने दोस्त आ उने के धक लगा ला जेल में खून चले न रो
1: जी जी
3: पुरान खून लगा ने के खून वही के बोलते वदन हो
1: जी अच्छा पो देखा रस डॉक्टर साहब के रूबर त इलाज मौजूद है डॉक्टर साहब बट हां मैं बुधाए तो डॉक्टर साहब के रेडियो बतो जी सर
2: जैसे एक्सरे करायल है तो वेल एंड बेटर बेहतर है वो तुम खड़ी देखार जो न भी है तो तुम ये रूबरू डेखारे वो तो बेहतर है सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ न कर मालिश हरगिज़ न करा कर अड़े किस्म के सूर में मालिश जो सो उन वक्त अवे थोड़ा फायदों दी है पे अवे वो नुकसान है रग दबजी सके थी हड्डी जो है सो क्रेक थी सके थी इन करबानी करो है सो मालिश हरगिज़ न करा कर वध में वध आ खुद दस दींदो आया सरें जो तेल गरम करे हेड विझी उहो लगायो सिर्फ तवा अप्लाई कंदा कयो लगाए छरींदा कयो उहो अध खुद जडे जिस्म में जज़ब थींदो आहे ऐं हॾियुनि में अंदर जॾहिं हुन जो तासीर वेंदो आहे तव्हां खे यकीन न ईंदो त केतिरो फ़र्क़ु पवंदो आहे तव्हां हेड खे मज़ाक न सम्झो हेड हिकु ईअं सम्झो त मेडिकल में जीअं सोज लाहिण जूं बुखार लाहिण जूं सूर लाहिण जूं इन्फेक्शन ख़त्म करण जूं वायरस ख़त्म करण जूं दवाऊं हूंदियूं आहिनि इहे सभु कम हेड में मौजूदु आहिनि हा यकीन मञी ख़ुदा जी ज़ात ते यकीन रखो हेड हिकु कुदरती शइ आहे अवां जेकॾहिं हल्की फुल्की थकावट आहे आज़माए ॾिसंदा कयो त हुनखे हल्की फुल्की थकावट आहे सूरु आहे धक लॻण जो सूरु आहे तव्हां राति जो गरम खीर में हेड विझी ऐं उहो खीर पीअंदो त तव्हांजो जिस्म जेको आहे सुबुह जो तंदुरुस्तु तवाना हूंदो तव्हां तेल सरें जे गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो लॻाईंदो अव्हांजो जेको आहे सूरु भॼी पवंदो ऐं हेड जा ॿिया यूनिक फ़ाइदा आहिनि हेड ते असां काफ़ी टाइम अॻे काफ़ी घणो ॻाल्हायो आहे हिन दफ़े वरी इनशाला ताला हेड जो मौज़ू खणी अव्हां ताईं पहुचंदासीं ऐं अहिड़े तरीक़े सां कुदरती शयूं आहिनि तमामु हाणे बि मां हिकु दोस्त खे जेको आहे सो असां जीअं अलॻि से नुस्ख़ा ॿुधाईंदा आहियूं न त तव्हांखे जेकॾहिं हिकिड़ो ख़्वारिश आहे तव्हां निम जा पन पाणी में काढ़े ऐं उन सां वेझो या पेर धुओ या ज़ख़्म साफ़ु करियो तव्हां बिल्कुलु सही थी वेंदो त इन में इहो हक़ीक़त ते मुबनी हूंदो आहे निम बि अहिड़े तरीक़े सां ई हिकिड़ी कुदरती शइ आहे जंहिंमें वायरस इन्फेक्शन वग़ैरह स्वेलिंग वग़ैरह सभु ख़तमु थींदा आहिनि त हिकु दोस्त हाणे बि मूंखे कॉल करे जेको आहे सो ॿ ॾींहं अॻे कॉल करे सिर्फ़ु इन जे लाइ उन सम्झो शायदि लाइव प्रोग्राम आहे हुन कॉल करे मूंखे इहा ॿुधायो त अव्हां असांखे हेड जेको आहे इहो सॉरी निम जेको आहे सो ॿुधाईंदा आहियो त पाणी पता पाणी जा जेको आहे सो काढ़े ऐं उन पाणी सां जेको आहे सो मां वेंजारियोसि, असां नंढड़े खे वेंजारियोसीं। हालांकि उन खां अॻे असां खोड़ सारा क़ीमती जेको आहे सो लोशन इस्तेमालु कयासीं, पर नंढड़ो ठीकु न पिए थियो। पर उन निम जे पाणीअ सां असां वेंजारियोसीं, उन नंढड़ो उहो बिल्कुलु ठीकु थी वियो आहे। जे उहो दोस्त ॿुधे थो पियो त महिरबानी करे भली लाइव अचे ऐं उहो वरी दोस्तनि खे लाइव ॿुधाए सघे थो। लेकिन उन दोस्त जो इहो बयानु हो जेको मां ते पहुचायोसीं, त इहे हिकिड़ी कुदरती शयूं आहिनि, हिननि जो का बि बनावत कान्हे का। उहां जी वॾी महिरबानी, वक़्तु तव्हांजो तमामु घणो वरितोसीं, ऐं इन सां गॾु जेको आहे प्रोग्राम जो बि शायदि टाइम पूरो थी चुको आहे। सो वॾी महिरबानी
1: सर, आख़िर में जेको पैगाम तव्हां
2: जी हा जी मां शुरू में ॻाल्हि कंदा आहियो त सिहत जेको आहे सो बीठो, यानी माण्हू बीठे जो सबको आहे, किरे जो केरी कोन्हे, त सिहत हज़ार नेमत आहे। ऐं प्रोग्राम बि सिहत जी ॻाल्हि आहे, त इन जे करे पंहिंजे सिहत जो वधि में वधि ख़्यालु रखंदा कयो, छो जो सिहत तव्हांजी आहे त सभु कुझु आहे। जॾहिं सिहत न हूंदी त तव्हां कुझु बि न आहियो। इन जे करे पाण खे हेल्दी रखण जे लाइ तव्हां पंहिंजी सोच साफ़ु रखंदा करियो, सफ़ाई जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा कयो, खाइण पीअण जो साफ़ु ख़्यालु रखंदा कयो। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़। अलाह वाहिद।

शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94। मेहराबपुर की

कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03003105109।

310 क्राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी।

Assalamu alaikum merhabur. प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जीए एफएम 94 मैरापुर। जीए एफएम 94 और मिल्क राइस ब्यूटी शो सुनने वाले तमाम सभी मौजिज लिसनर्स को वेलकम भलीकार खुशामदी जी आयनु वशात के और पखैर रागले। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सभी खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आप सभी के साथ हैं।

जी दोस्तों, बेल क्राइस ब्यूटी शो से कह रहा हूँ, मैं आबिद चौहान है, वहाँ बुधी रहे हो जी FM 94 मेहरा। दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स, खूबसूरत प्रोडक्ट्स जैमें मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम आए ना, ये तमाम खूबसूरत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स जिनकी दावा है तो टिन डीन में अवां के चेहरे से वाजे फ़र्क, रंगत गोरी ए ग्लो आणी दियो हैं, खूबसूरती जो नज़र आए, भरोसा जो दिल जीत ले, अड़ो एतमाद जो दिल खटे वे, ये प्रोडक्ट अवां के मिलंद अवे शहर मेहरापुर के शाही बाजार के हर वडे ए सुठे जनरल स्टोर से, जै मझा खुशी जनरल स्टोर मेहरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मोहल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर, अल करम जनरल स्टोर मेहरापुर। इन अलावा जहाँ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पैंजे कें मनपसंद जनरल स्टोर से कराण चाहो था तो उन लाए असो हेल्पलाइन नंबर डायल करो पव, असो हेल्पलाइन नंबर है 0300 310 510 9। जी दोस्तों, प्रोग्राम की इब्तदा पर अस पढ़ ली आगाज कंदा हूँ कें न कें खूबसूरत कसीदे से, तो अज अस प्रोग्राम में शामिल कंदे जो खूबसूरत कसीदो वो असाजे बिल्कुल ऑब्वियसली तमाम खूबसूरत टाइटल जिन जो है सोना लगता है अरी वाला सिंध जो नाले वो गुलूकार असो तमाम मौजिज दो तुफैल संजरानी साहब नाले से ग्रुप है दो उन्हें जो तुफैल साई सा गड जो ये ड्यूट में कंबाइन जो खूबसूरत कसीदो पढ़ो है वो अवां सभी के नाव था पे क्यों अचो तो गजी करे कसीदे से आगाज कजे प्रोग्राम जो तपोए सब मिलके बोलो हैदर हैदर।

अॼुकल्ह जेको सोशल मीडिया जो दौरु आहे, सोशल मीडिया ते हर माण्हू तपे पियो आहे, या त जंहिंजे हथ में एंड्रॉइड आहे यानी कि मोबाइल फ़ोन आहे, टच मोबाइल खणी चऊं असीं, टच मोबाइल फ़ोन आहे त उहो पाण खे या त सोशलिस्ट सम्झे थो, या त सहाफ़ी सम्झे थो, या वॾो जेको आहे त पारसा पाण खे सम्झे थो, ऐं सभु स्टेटस ॿियनि लाइ लॻाए थो त हीअं करणु घुरिजे, हूअं करणु घुरिजे, या हीअं थी रहियो आहे, हूअं थी रहियो आहे। मूं अॻ में बि अर्ज़ु कयो त मूंखे त दुनिया में किथे बि कॾहिं बि को मुनाफ़िक नज़र ई न आयो आहे। अवां हैरान थी रहिया हूंदो त मुनाफ़िक कीअं न हूंदा आहिनि, हूंदा आहिनि, साईं खे नज़र कीअं कॾहिं कोन आयो, न बिल्कुलु अव्हां खे बि कोन आयो हूंदो। इहा त थी वई दावा, ऐं दावा जी थींदी आहे दलील, छाकाणि असांजी प्रोडक्ट आहे जेका न उहा आहे मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट, जिन जी दावा आहे त ख़ूबसूरती जो नज़र आए और भरोसा जो दिलि जीत ले, और तीन दिन में फ़क़त और फ़क़त तीन दिन में रिज़ल्ट वाज़े। लेकिन शर्त यह है, वही दावा वही है कि दलील हम उसका बाद में आपको देंगे जब आप हमें मौका देंगे। आप मौका ये देंगे, आप परचेज़ करेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो आपको दलील होगी कि जब आप कहेंगे और कहा है आपने, बहुत सारे कॉलर्स ने और आपने सुना है कि कहा है कि भाई रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दलील है हमारी बाकी सुनने वालों के लिए। जी तो बात चल रही थी कि मुनाफिक कहीं नहीं मिला, तो मुनाफिक कैसे नहीं मिला, मैंने कहा आपको भी नहीं मिला, तो ये है दावा मेरी। अब उसका दलील देते हैं, तो दलील ये है कि हम जिस जगह जिस महफिल में बैठे होते हैं, जहाँ चार दोस्त बैठे होते हैं, वहाँ चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दुनिया डाढ़ी साड़ो लिया, और दुनिया डाढ़ी जेका है त ख़राब आई, यानी कि उन्हनि चइननि में पंहिंजे पाण में अंदर में कॾहिं बि को उते ख़राबु नज़र न आयो, उहे चार ई ॿियनि खे ख़राबु था चवनि।

0: दिल न कर जे की तियो सो
1: मोहतरम मंजूर सखीराणी जे हन सुरीले आवाज संगड डबल एतरफा सबनी सिंध वासन जी खिदमत में मोहम्मद कासिम माका सलाम अर्ज करे थो। हाज़िर है सिंध धरती जी नामवर ए नौजवान फनकार मोहतरम मंजूर सखीराणी जी ओरिजिनल साउंड ट्रैक तो रिकॉर्ड कल चूंड सदाबहार कलामन जो वॉल्यूम नंबर 2।

जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से गुआ आया अब चौहान अवं बुधी रहा जी एफ एम 94 मेहराबपुर असा सा गुन कॉलर लाइन से मौजूद अस कॉल शामिल कदे प्रोग्राम में मादरस खाई कॉल शामिल नी सकी

0: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਕ ਰਾਈਸ ਬਿਊਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਸਪੋਂਸਰ ਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਾ ਬੁਧੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਐਫ ਐਮ 94 ਤੇ। ऐं जिन दोस्तनि हींअर ट्यून कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां त मिल्क राइस जूं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स अव्हांजे शहर जे तमामु वॾे जनरल स्टोर्स ते मौजूदु आहिनि। प्रोडक्ट्स में शामिलु आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। ऐं जिन जनरल स्टोर्स ते इहे प्रोडक्ट मौजूदु आहिनि, अवेलेबल आहिनि, उन्हनि मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां चाहियो था अव्हां पंहिंजे मनपसंद जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट खे अवेलेबल कराइण, त पोइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करिणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-509। ऐं हिन ते कॉल करे अव्हांखे ॻाल्हि ॿोल करणी पवंदी ज़फ़र इक़बाल साहिब सां। ज़फ़र इक़बाल साहिब खे मुंहिंजा सलाम ॾींदो। सलाम ॾियण खां पोइ अव्हां पंहिंजो मसलो बयानु कंदो ऐं अव्हांजो मसलो रिज़ोल्व थी वेंदो। अचो त गॾिजी हिकिड़ी कॉलर सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। कॉलर असां सां गॾु लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां जी? अदा भाई जान, अव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु घटि पियो अचे। महबूब अली शहर साईं, वेलकम, भली कार, कहिड़ा हालनि मुंहिंजा दोस्त? कहिड़ा हालनि मुंहिंजा दोस्त? ख़ुशि आहियो
1: साईं? ख़ैर ख़ैर, तव्हां ॿुधायो, नेटवर्क जे ॾाढो इशू लॻो पियो आहे साईं।
0: जी जी जी जी, थी वेंदो आहे कॾहिं, तॾहिं त मां एतिरियूं नसीहतूं बि अॼु कयूं, एतिरियूं नसीहतूं त मां ज़िंदगी में कॾहिं कंहिंखे न कयूं। का ॻाल्हि बुरी लॻी हुजे त पोइ माज़रत सां। पक सां हर माण्हू पाण खे पारस आहे, ॿिए खे गुनाहगार, सफ़ा ईअं काफ़र सम्झे थो, ईअं न? जाति पाइण लाइ को तयारी न आहे। जेकॾहिं जाति पायूं त मसला हल थी वञनि न। हा, माण्हुनि में एतिरी तेज़ी आहे, माण्हुनि में एतिरी तेज़ी आहे जो वाकिया पढ़ी करे, ॻाल्हियूं ॿुधी करे इंतिहाई दुख थींदो आहे त कंहिं समोसनि जी प्लेट ते, चटणी जी प्लेट ते बि असां वटि माण्हुनि जूं लठियूं थी वञनि। ऐं गाॾीअ जो अॻियां अची वञण बि उन ते बि जेको आहे हकल थींदी आहे, ओहो हेॾे ॾिसे नथो। अॻियां लफ़्ज़ मां कोन थो चवां, त उन खां वधीक जेके आहिनि त तेज़ जेके आहिनि त माण्हू थी वेंदा आहिनि। जॾहिं त ॿई मुस्कराए करे हिक ॿिए खे हथ ॿधी सॉरी चवनि, जेका असांजी रस्म बि आहे सिंधियुनि जी, हथ जोड़ी जेका रस्म आहे, असां उहा जोड़े छॾियूं त पोइ दुनिया जा वॾे में वॾे मसला हल थी वेंदा आहिनि।

थी त पोइ हुते अञा पहुता न आहियूं अमा अच्छा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी पोइ आवाज़ कटिजे पई मां सम्झमि कोन असल में काफ़ी दोस्तनि सां ॻाल्हि थींदी आहे न इहा त पोइ यादि

0: तव्हां जो ज़बरदस्त आहे मिल्क राइस क्रीम बि भली आहे, साबुण बि हुनजो ख़ुशबूदार आहे। ऐं इंशाल्लाह ताला ॿियनि दोस्तनि खे बि ॾस ॾींदासीं, बि वठी ॾींदासीं।
1: हा, एतिरी तारीफ़ खां पोइ माना हाणे फरमाइश लाज़मी कंदो, एतिरी तारीफ़ खां पोइ हाणे फरमाइश लाज़मी थी वई, माना ईअं न फरमाइश पूरी बि करणी पवंदी असांखे।
0: साईं फरमाइश मां अॼु इहो गानो ॿुधायो हुयो जेको आहे साईं आमन मुगल जो गानो अथव।
1: कहिड़ो?
0: सिंधड़ीअ ते सिर केर न ॾींदो, इहो मां सम्झां थो इहे बोल त इहे अथव।
1: इहो त अहमद जो अहिड़ो त को मुगियत न ॿुधो आहे, इहो ॿियनि दोस्तनि खोड़ सारनि गायो आहे। इहो ई हलाईंदासीं, इहो ई हलाईंदासीं, पोइ जंहिं बि गायो आहे इहो ई हलाईंदासीं। वरी महिरबानी, वरी महिरबानी, कुर्ब लव यू लख लाइक, थैंक यू पहिरां, अलाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, बिल्कुलु, जीअं त नेटवर्क जो इशू हुयो त पोइ हिन करे असां हाणे कुझु कॉल्स अटेंड कंदासीं। कॉल्स ॾाढियूं घटि अटेंड थियूं आहिनि, बल्कि इहा पहिरीं कॉल हुई। सो अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? दुआऊं केरु पिया ॻाल्हायो?
2: राजू मारवाड़ी मेरापुर खां।
1: राजू मारवाड़ी, वेलकम, भलीकार, खुश आमदीद, पहिरां कहिड़ा हालनि?
2: ख़ुशि आहियो, ठीकु ठाक, अलाह जो शुक्र आहे। तव्हां ॿुधायो कीअं तबियत, ओके, ठीकु ठाक।
1: ए वन ॾिसूं भला अव्हां जी जनरल नॉलेज केतिरी भली आहे। त इहो मारवाड़ी छाजे करे सॾियो वेंदो आहे अव्हां खे?
2: साईं भील बिरादरी।
1: न न न, उहो तव्हांजी भील बिरादरी मारवाड़, मारवाड़ इंडिया जो इलाइक़ो आहे। मुंहिंजी इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो करे छॾियो त मारवाड़ी माना मारवाड़ खां आयल, पोइ मारवाड़, मारवाड़ शहर इलाइक़ो आहे इंडिया जो। ॿियो, अव्हां असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु

प्लेलिस्ट बीहारी आहे, पोइ उहो सॼे सिंधवासनि खे, मेहराब पुरवारनि खे असां डेडिकेट कंदासीं सभिनी तरफ़ा जी।

दोस्तों त पोइ हिकु दफ़ा माइश बि पूरी थी वञे, टाइम बि थोरो घटि बचियो आहे, त पोइ उन खां पोइ कॉल बि कोशिशि कंदासीं अटेंड थी सघे वधि में वधि। अचो त गॾिजी करे शमन अली मीरालीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ई ख़ूबसूरत ट्रैक एंजॉय कयूं। मुंहिंजो पहिरीं अचे थो हिन टोले में।

जी दोस्तों, गीत भी हलंदो रहंदो। बैकग्राउंड असां इन खे गीत खे बणाए छॾंदासीं अवां लाइ, छाकाणि त टाइम बि कुझु घटि बचियो आहे, त पोइ अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि लाज़मी आहे। मिल्क राइस ब्यूटी शो जी ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी शो, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, इहे तमामु तर प्रोडक्ट मौजूदु आहिनि, अवेलेबल आहिनि। अवां जे पंहिंजे शहर बैरापुर जे शाही बाज़ार में हर वॾे जनरल स्टोर ते, जंहिं मुंहिंजा ख़ुशी जनरल स्टोर स्टोर असांजे पहिरीं प्यारे दिलरुबा दिलबर दोस्त मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु, जन उते पाण मौजूदु हूंदा आहिनि, हुन सां मुलाक़ात कयो। सेल्फी बि कढो, फोटो ठाहियो, ऐं उहो ग्रुप में ॿुॾे माणे छॾंदो, अव्हां जो दीदार बि थी वेंदो। ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर ते असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि। हुन खां अलावा फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोहल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ते पिण असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे। जनरल स्टोर ते वञी रहे ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बि मुंहिंजा सलाम ॾींदो, त उहे बि क़बूल कर, फ़क़त न मिलंदो आहे त प्यार। पर जेकॾहिं कंहिं दोस्त जे ज़हन में इहो ख़्यालु आहे त प्यार बि मिली वेंदो, प्यार न हूंदो आहे। जी दोस्तो, त पोइ प्रोग्राम जो वक़्तु लॻभॻि पंहिंजी पुॼाणी जा पहुतो आहे। सो असां आख़िरी गीत जेको आहे त पंहिंजो प्ले करे ऐं अव्हां खां इजाज़त बि वठंदासीं, ऐं इन उमेद सां त नेक्स्ट जॾहिं अव्हां जो जेके रहिजी वियल जेके दोस्तनि जूं कॉल्स आहिनि, उहे कॉल बि अटेंड कंदासीं, ऐं उन खां अलावा फीडबैक बि वठंदासीं त मिल्क राइस जूं प्रोडक्ट केर केर किथे किथे इस्तेमालु करे रहियो आहे ऐं उनजो फीडबैक छा आहे, रिज़ल्ट छा आहे, कंपनी जी दाणी दी आहे खे दलील ॾियण लाइ उनखे इस्तेमालु लाज़मी कजे। त पोइ हिन सां गॾु गॾु पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे ॾींदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं ॿिए ॾींहं ते साॻे प्रोग्राम सां, साॻे चैनल ते। अवां हीउ ट्रैक इंजॉय कयो ऐं मुंहिंजी यारो यारी, सिंध सलामत, साध सलामत, अलाह निगहबान।

घराई कदड़ अफ़गान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फजाई ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल थाक ड्रोन जा जखीरा तबाह। समा वारे फाकी वजीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई आहे। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स जखीरन के कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो वियो आहे।

0: अमेरिका जे दौरे ते पहुतल चीनी सदर शी जिनपिंग जी व्हाइट हाउस ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाकात। आलमी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। अमेरिकी सदर चयो आहे त खेसि अमेरिका ऐं चीन जे लाॻापन ते फ़ख़्र आहे। हुन चीनी सदर सां इंतिहाई शानदार दोस्ती क़ाइम करे वरिती आहे। मुलाकात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि जे मसइलनि ते ज़बरदस्त गभराई थी। चीन सां वापारी लाॻापा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां न्यूयॉर्क में ईरानी सदर मसूद पेशकियान जी मुलाकात बि तरफ़ लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मुलाक़ात दौरान नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ ईरानी, परॾेही वज़ीर अब्बास राक़्शी ऐं ॿिया बि मौजूद। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अमरीका ईरान तकरार ख़तम करण लाइ पुरउमेद आहियूं। ख़िते में अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। समूरो ध्यानु ईरान अमरीका जंग जे ख़ात्मे ते आहे। शर्त पूरा थियण ताईं नाअपनाए हरमुस खुलंदो, नई ॻाल्हियूं थींदियूं, ईरान जो वाज़ ऐलान। सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि सां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार यहया रहीम सफ़ी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़िजी वेंदी। माशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे। वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तम करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बीसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तम थी वियूं आहिनि। हाणे को बि मुल्क ईरानी जहाज़नि खे लैंडिंग करण न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सद ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। यमनी हुसियन जी सऊदी शहर ताइफ ऐं यम्बा ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसियन पारां फायर कयल छह बैलिस्टिक मिसाइल फिज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मूजिब यमन मां हुसियन पारां फायर कयल छह मिसाइल जी निशानदेही ते खेन फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अल मालकी चयो आहे त मिसाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान नाहे थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसियन जे हमलनि सबब मुतासिर थियल तेल पाइपलाइन जी मरम्मत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीका खां लागू पाबंदियूं फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। फलस्तीनी सदर चयो आहे त इसराइल फलस्तीन जे अवाम जी नसल कुशी करे रहियो आहे। हमला अञा ताईं जारी आहिनि। फलस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती, बेदख़ली ऐं नसल कुशी वारी जंग शदीद थींदी पई वञे। वालारियल ओलन जे किनारे में गैर क़ानूनी कब्ज़ो वधायो पियो वञे। गज़ा जो अवाम क़त्ले आम, तबाही ऐं बुख खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। फलस्तीन खे जनरल असेंबली इजलास में शिरकत खां रोकणु क़बूल करण जोॻो नाहे। गज़ा जूं हालतूं संगीन आहिनि। फलस्तीनी अवाम ते बमबारी ऐं नसल कुशी थी रही आहे। गज़ा जे अवाम खे पंहिंजे ई घर में शहीद कयो पियो वञे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां जी एच क्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाकात। आई एस पी आर मूजिब मुलाकात दौरान बेतरफ़न लाॻापन इलाक़ई अमन ऐं सलामती ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिनि, उते सुठी खुराक ढोरनि जी ज़रूरत आहे।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000310501। 1-909-0300-310-5109.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: फॉरवर्ड
2: गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

मोहब्बत में सावल अबड़ो चए। खास फरमाश रहीम कोरार, मास्टर नूर मामन, मामद अली कोरार, अली हसन कोरार, शहर सखर का खमीसो लेगारी, अली हसन लेगारी, सदाम लेगारी, लुत्फ ला चने की खास फरमाश जो प्यारा प्यार दोस्त बचल शाह मियाणी का हनीफ मलिक की खास फरमाश, रफीक लेगारी फरमाश उनो फर्जंद सिकंदर लेगारी, रफीक लेगारी फरमाश उनो फर्जंद सिकंदर लेगारी।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरिल दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची का कश्मीर किंझर का कारूंझर ताई सुहणी सिंधवासन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो GAFM नेटवर्क। GAFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूबनि दिलरुबा दोस्तनि पिरी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

वस में नाहे, वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां, रात नाहे जो मां गुज़ारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां, रात नाहे जो मां गुज़ारे छॾियां। दर्द आहिनि त दिलि ॾुखाइनि था, दर्द आहिनि त दिलि ॾुखाइनि था, पखी हुजनि त मां उॾारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां। अॼु इन चौसठे सां शुरूआत कईसीं असांजे हिक पिरी प्यारे दिलरुबा दिलबर दोस्त महबूब साईं जो फ़रमान हुयो। उहो फ़रमान अखियुनि ते हुकुम जी तामील कंदे असां साईं शहज़ाद अहमद मलिक साहब जो इहो चौसठो चूंड प्रोग्राम में शामिलु कईसीं। प्रोग्राम में बाक़ाइदगी सां ग़ज़ल ऐं गीत बि शामिलु कंदासीं ऐं खोड़ सारनि ख़ूबसूरत महबूब असांजे सिंध जे नाले वारनि शाइरनि जी शायरी पिणु शामिलु कंदासीं।

तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, केडो दिलकश हसी ही नजारो लगो। तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, केडो दिलकश हसी ही नजारो लगो। तुझे मुर्कण सा खुशबू थी वही आ फिजा, तुझे मुर्कण सा खुशबू थी वही आ फिजा, खुशबू खुशबू आ जग मुखे सारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो। तुझे कन में तो पियो टिमटिमाए इए, तुझे कन में तो पियो टिमटिमाए इए, वालो आकाश जो कोई तारो लगो, तुझो मुर्की दिसण मुखे प्यारो लगो, खिरो दिलकश हसी ही नजारो लगो।

सभ जे साम्हूं सॼई अयाबत चई, सभ जे साम्हूं सॼई अयाबत चई, मुंहिंजो दिलबर मूंखे दिलवारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसणु मूंखे प्यारो लॻो, कहिड़ो दिलकश हसीं ई नज़ारो लॻो।

इहे सिटूं मुनाचीस अब चुहण जूं हुयूं। असां इन सां गॾु हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में। अचो त गॾिजी हीअ ख़ूबसूरत ट्रैक एंजॉय कयूं।

प्रोग्राम दिल जी गाल से गड़ा हुआ है आबिद चौहान आए आवा बुधी रहे हो जी एफ एम नेटवर्क वक्त थे हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक का पोए वापस वरी वनदा से बुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: नूरे जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
2: जीजा ढोर चारो मसालो आज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ही थो वठी अचा।
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तो जाई चवां थो तू त तू आहीं। अगर तुझो खुमार आहे सरो मूलय बहार आहे अगर तुझो खुमार आहे सरो मूलय बहार आहे सदाई आहे सराई चवां थो तू त तू आहीं। कदें तू को अणो आहीं कदें सब खां घणो आहीं कदें तू को अणो आहीं कदें सब खां घणो आहीं मञा थो आऊं यकताई चवां थो तू त तू आहीं। कदें तू यार में जरकी कदें थी कूंज थो करकी कदें थो यार में जरकी कदें थो कूंज थो करकी सदा जा रूह मां आई चवां थो तू त तू आहीं। अयाज आहे विथी तोखे त हुन जी ॻाल्हि गाए वठ अयाज आहे विथी तोखे त हुन जी ॻाल्हि गाए वठ वजे जीअं रोज़ शहनाई चवां थो तू त तू आहीं। न ॿोली बि अचे काई चवां थो तू त तू आहीं इहा ई वात वाई मूं चवां थो तू त तू तू आहीं। वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान आहियां मां ॿुधी रहिया जी एफ एम नेटवर्क। कतन कर मोड़िया जॾहिं भाङो टियों शेख अयाज जी ख़ूबसूरत ग़ज़ल अवां सभिनी महबूबनि जे नाओं कई से स्पेशल इन ग़ज़ल जो डेडिकेशन इन ग़ज़ल जो अर्पण उहो असांजे यार प्रिय प्यारे दोस्त उस्ताद ज़ीशान सुमरो जे नाओं कजे थो जंहिं इहा चूंड ग़ज़ल पढ़ण लाइ मूंखे मोकिलियो। दोस्तनि जी शिकायत हुई त कॉल्स नंबर असां घटि अनाउंस कंदा आहियूं सो अॼु उथंदे ई प्रोग्राम में असां नंबर अनाउंस करणु वञूं था। असां नंबर नोट करे वठो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

कॉल शामिल करना से प्रोग्राम में पहली कॉल अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथागा हेलो

0: हा
1: मोजी जे मथां सैर घुमाए छॾियो सिंध जे लीजेंड सानी लतीफ़ शेख अयाज़ साहब शामिल करे छॾियोसि त असांखे त पंहिंजी विसरी वई त असां बि प्रोग्राम में शामिल कईसीं ईअं बिल्कुलु संगत खे बि ॿुधायो पिया या अकेला ॿुधो पिया
0: ज़बरदस्त जेके
1: लव यू सर लव यू लख लाइक मोहबतूं अवां भाइरनि जूं खणण जो सबबु हूंदो आहे हिकु त इहो आहे त ऑफिशियल फोन आहे कंहिं हिकु माण्हूअ जो बि नंबर में सेव कोन्हे को ऐं कॉल उन ई नंबर तां खणणी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेको आहे त प्रोग्राम जो पैटर्न आहे अव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं त पहिरियां 15 मिंट जेके असांखे लॻी वेंदा आहिनि तव्हां महबूबनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदे ऐं जेको आहे त उन में शायरी पेश कंदे उन सां गॾो गॾु गीत हलाईंदे ऐं ब्रेक खां पोइ असां कॉलिंग जो सिलसिलो स्टार्ट कंदा जी भाउ को दोस्तनि जो नाम शामिल करणु चाहींदो को दिलि जी ॻाल्हि को प्यार जो पैगाम ॾियणु चाहींदो वाह साईं वाह वाह वाह वाह वाह दिलि जो दिलि भर हिकु कजे सो तूं आहीं मुंहिंजा मिठा ईअं मांझी फ़क़ीर बि अॼु शामिल कंदासीं हा हिन महिल ताईं मांझी मां सम्झां थो कोन थियो आहे शामिल या हिकु अधु थियो हूंदो बिल्कुलु थियणु खपे मांझी साईं बिल्कुलु साईं मांझी फ़क़ीर मूं प्ले लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे हाणे काए खां अॻु में हलायूं हीअ ब्रेक वठंदासीं हाणे 2 मिंटनि में हिकिड़ी कॉल अटेंड करे ऐं हिन ब्रेक खां पोइ इहो मांझी फ़क़ीर जो कलाम हलंदो ठीकु आहे 10 जे अंदरि वॾी महिरबानी प्यारा नाम शामिल कयो जल्दी सां सलाम सखी पीर मौलाली मदद कुर्ब साईं कुर्ब सलाम थियो थैंक यू सर जी ब्रेक खां अॻु में चाहींदासीं त हिकिड़ी जोड़ी कॉलर जी शामिल थी वञे प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
2: साईं वालेकुम सलाम अनिल मोरे खां
1: अनिल मोरे खां वेलकम भलीकार खुशामदीद अनिल साईं दुआऊं अवां ॿुधायो कहिड़ा हाल आहिनि ख़ुशि आहियो
2: अलाह जा एहसान तव्हां ॿुधायो
1: दुआऊं दुआऊं एवन अनिल साईं मां सम्झां थो अव्हांजी फस्ट टाइम प्रोग्राम में कॉल शामिल थी आहे
2: जी साईं फर्स्ट टाइम मां असां डेडिकेट कंदासीं
1: छा डेडिकेट करणु चाहींदो छा अर्पण चाहींदो
2: साईं डेडिकेट कंदासीं असां पंहिंजे भाउ खे वॾे भाउ खे
1: छा डेडिकेट कंदो शायरी या गीत छा डेडिकेट कंदो
2: सर गीत शायरी गीत
1: गीत डेडिकेट कंदो कयो
2: मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे
1: हा
2: ज़ोर केॾो हवा लॻायो
1: हा अॻिते नथा पढ़ो
2: सर बस थोरो ईअं
1: हिकिड़ो माण्हू इहे आहे अचिणो पर मूं सॼो घर खणी सजायो आहे मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे ज़ोर केॾो हवा लॻायो
2: ज़ोर केॾो हवा लॻायो
1: क्या बात आहे
2: सर ॿियो डेडिकेट कंदासीं असां जगदीश कुमार खे
1: जी
2: ॿियो रिंकी लाते खे
1: जी
2: असांजो दिलबर आहे साजन कुमार ऐं असांजो उफाट
1: जी
2: गफार पीज़ारो
1: जी
2: सॼी बिरादरी बलट बलट बिरादरी खे थैंक्स हुजे
1: वॾी महिरबानी लव यू सर थैंक यू लव
2: ओके महिरबानी

0: तोखे विसारियां कीं ओ दिलबर, तोसां आहे नीह ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीं ओ दिलबर, तोसां आहे नीह ओ दिलबर। आऊं उञायल थर रहे काछो, आऊं उञायल थर रहे काछो, तूं सावण जो मींह ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीं ओ दिलबर। पल पल तड़पां फतकां थो मां, पल पल तड़पां फतकां थो मां, मछी पाणी लए जीअं ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर, तोसां आहे मींहं ओ दिलबर। चाबीअ बिना जीअं तालो आहे, चाबी बिना जीअं तालो आहे, दर ते टंगियल आ ईअं ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। हेकर मोटी आ तू सनम, हेकर मोटी आ तू सनम, जीअं चवंदे कंदुसि तीअं ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। इश्क कयो मजबूर आ बिद, इश्क कयो मजबूर आ बिद, न त हुआ से पहिरियां शींह ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर, तोसां आहे नीह ओ दिलबर। आऊं उञायल थर ऐं काछो, तूं सावण जो मींह ओ दिलबर। तोखे विसारियां कीअं ओ दिलबर। कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम, लुस्तफर मरीज खां मोहम्मद कासिम।
0: जी सोणा साईं,
1: फ्लोर मरीज खां मोहम्मद कासिम।
0: आवाज अवां जो कुछ घट पियो थे।
1: साईं फ्लोर मरीज गुड्डो खां मोहम्मद कासिम।
0: मोहम्मद कासिम साहब गुड्डो खां वेलकम भलीकार।
1: फ्लोर मरीज गुड्डो,
0: फ्लोर फ्लोर मोरी।
1: हां गुड्डो साईं करे मला आलो
0: न मुजो अचण कोन थियो आ।
1: अच्छा मीरपुर खास
0: में हा इन पासे तमाम घट अचण थियो आहे। इहा पटी हीअं अलॻि सां हीअं बस वञण थींदो आहे कराची ताईं, त पोइ जेको ट्रेक सिधो आयो उतां ई गुज़रिया वेंदा। इहो त सपनो आहे, ड्रीम आहे, ड्रीम आहे, बिल्कुलु ड्रीम आहे। अवां घुरायो कॾहिं ईंदासीं पहिरां
1: तकरीबन जेको आहे टाइम जेको आहे हुनजो जल्दी ख़तम थी वञे। हा बिल्कुलु बाक़ाइदगी सां शायरी बि तव्हां ॿुधायो पिया, असांखे तमामु मज़ो पियो अचे।
0: असल में कोशिशि इहा ई आहे त पर पोइ बि कुझु कमियूं कोतायूं उन दोस्त खे बि चवंदासीं साईं खे, उहो मोहतरम असांजो नाले वारो शायर आहे
1: साईं। असल में ॻाल्हि जेका हुई त कॉलर नाले जे लाइ
0: जी,
1: हाणे ॾिसो साईं तकरीबन मूं 400 खां वधीक कॉल जेको आहे पंहिंजे प्रोग्राम में ट्राई करण जी कोशिशि कई आहे त मुंहिंजो कॉल लॻे
0: जी,
1: लेकिन हुनजे बावजूदि तव्हांजो जेको आहे सो फोन लॻी बरहाल प्रोग्राम ॿुधोसीं ऐं तव्हां बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं हुन बि
0: यकीन कंदो ॾिसो कोन पिया मूंखे, फ़क़ति ॿुधो पिया मुंहिंजा हथ जुड़ियल आहिनि।
1: जी जी ना ना भाई तो मसलो ना वडो आई आई असा जो आए तो कचारी पुंदा हूं आई ये कचारी घणा मानो चंदा ने कचारी जे का खत्म थी है पर या गलत गाल है तो ये भी पाजी कचारी हो गया
0: जैसी असा के वडड़न खा मिली असा भी इहो चाहिंदा से तो सिंध में या रस्म बरकरार रहे पंहिंजो कल्चर आहे ऐं असांखे फ़ख्र आहे पंहिंजे सकाफ़त ते वक़्तु वञी रहियो आहे असांजो ब्रेक डाउन न्यूज़ ॾांहुं सो कॉल काफ़ी ड्रिगी थी वई मां हिन लाइ बि लख थो।

0: वक़्त वञी रहियो आहे असांजो ब्रेक डां न्यूज़ ॾांहुं, सो कॉल काफ़ी ड्रिगी थी वई, मां हिन लाइ बि कमी महसूस कई, सो तंहिं करे अॼु उथंदे ई अनाउंस कयोसीं, अञा बि कबो ॿीहर बि कबो बिल्कुलु कॾहिं खां ॿुधो पिया प्रोग्राम असांजो?
1: प्रोग्राम साईं मुकमल ॿुधो आहे।
0: वाह वाह वाह वाह, अकेला ॿुधो पिया, दोस्तनि खे बि शेयर कयो पिया?
1: न बसि अकेला ॿुधायो,
0: दोस्तनि खे ॿुधायो न, अहिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं, इन्हनि प्यारनि माण्हुनि जूं फोनूं कॉलूं ऐं अहिड़ियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं दोस्तनि खे बि मां भाइटियो आहियां, चाचो आहे मुंहिंजो
1: साईं।
0: साईं ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे न्यूज़ जो बि, ऐं अव्हां को सलाम, को नियापो, को दुआ शामिल करणु चाहींदो? लाजवाब लाजवाब, वाह साईं वाह, वॾी महिरबानी साईं प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ, कुर्ब
1: हाणे ख़बर पई न
0: हाणे लख लाइक, थैंक यू
1: महिरबानी।

दोस्तों वक्त थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो ऐं कुझु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आफ्टर न्यूज़ ब्रेक वरी वापसि वरंदासीं ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: ब्यूटी क्रीम।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां न्यूयॉर्क में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान जी मुलाकात बेतरफ़ लागापन ऐं ख़ते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। मुलाकात दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़, ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची ऐं बिया बि मौजूद हुआ। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अमरीका ईरान तकरार ख़तम करण लाइ पुरउमीद आहियूं। ख़ते में अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। समूरो ध्यानु ईरान अमरीका जंग जे ख़ात्मे ते आहे। माशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे। वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तम करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर साक स्कॉट बीसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तम थी वयूं आहिनि। हाणे को बि मुल्क ईरानी जहाज़नि खे लैंडिंग करण न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सदु ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। यमनी हुसैन जी सऊदी शहर ताइफ़ ऐं यम्बा ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसैन पारां फायर कयल 6 बैलिस्टिक मिसाइल फिज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मूजिब यमन मां हुसैन पारां फायर कयल 6 मिसाइल जी निशानदेही ते कंहिं फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अल मलकी चयो आहे त मिसाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान न थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसैन जे हमलनि सबब मुतासिर थियल तेल पाइप लाइन जी मरम्मत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीका खां लागू पाबंदियूं फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। फलस्तीनी सदर चयो आहे त इसराइल फलस्तीन जे अवाम जी नसल कुशी करे रहियो आहे। हमला अञा ताईं जारी आहिनि। फलस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती बेदख़ली ऐं नसल कुशी वारी जंग शदीद थींदी पई वञे। पालरल ओलंदे किनारे में गैर कानूनी कब्ज़ो वधायो पियो वञे। गज़ा जो अवाम कतलेआम तबाही ऐं बुख खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। फलस्तीन के जनरल असेंबली इजलास में शिरकत खां रोकण कबूल करण जोगो नाहे। गज़ा जूं हालतूं संगीन आहिनि। फलस्तीनी अवाम ते बमबारी ऐं नसल कुशी थी रही आहे। गज़ा जे अवाम खे पंहिंजे ई घर में शहीद कयो पियो वञे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां जीएचक्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां मुलाकात। ISPR मौजिब मुलाकात दौरान बेतरफ़न लागापन इलाक़ाई अमन ऐं सलामती ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर चयो त पाकिस्तान मालदीव सां लागापन खे अहमियत ॾियूं था। लागापा वधीक मज़बूत बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। मालदीव जे स्पीकर पाकिस्तान जे इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेकाम लाइ किरदार जी साराह कई। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टीवी सर्वे सां को फ़र्क़ न पवंदो। MQM बीह लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर शजील नामेमण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री MQM जी हड़तालनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ सिजोस खे चूंडे मारियो वियो। MQM खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। कराची वारनि खे माज़ी जूं कहाणियूं न पर पाणी, बिजली, रोड ऐं रोज़गार घुर्जे। MQM ते संगीन ॾोहनि जा सबूत आहिनि त अदालतनि में पेश कया वञनि। सिंध असेंबली में मुख़ालिफ़ धुर अॻवाण अली ख़ुर्शीदी चयो आहे त शजील नामेमण माज़ीअ जे इल्ज़ामनि जी आड़ में हुकूमती नाकामियुनि तां ध्यानु हटाइण जी कोशिश करे रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।